इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये तो सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं आ तो भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महकता। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने। वहाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

है तो हाँ अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हाँ बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक।
11: oh, no.
15: पति ने दिए 400 करोड़ रुपए।
16: अच्छा, अमीर आदमी होगा ना।
15: अरे वो छोड़ो, ये सोचो कि कितना दुखी होगा जिसने अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: अच्छा चाचा।
1: अरे राजेश भाई,
2: दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ और बताओ।
1: बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। हाँ।
1: और सूरज भाई आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है, चलो चलता।
3: अरे राजेश भैया, आप उसे हाथ क्यों मिला रहे थे?
4: उसे पिछले महीने से टीबी है।
2: 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचें। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचें, एक बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं अगर वो किसी ने हमसे कहा तो हमें क्या करना।
7: कहाँ चले?
8: सब
7: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
9: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
7: है।
9: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी।
10: पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी।
11: सूरज।
12: हाँ बोल।
11: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
12: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
13: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
12: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा।
13: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
14: बीबी एक बात बताओ। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
6: वही जो आप किया करते थे।
14: कौन सी?
6: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: ऑडियो जंगल।
1: नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। लेबनान पर इसराइल के बड़े हमले, होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद। उच्च शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में अभी भी हो रही तंबाकू उत्पादों की बिक्री। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान आपस में बैठकर निकालेंगे बीबीएमबी मुद्दे का समाधान। हिमाचल के लिए मंजूर 5 केंद्रीय विद्यालय नॉन फंक्शनल। सेब, लाल चावल, शर्मा व हिमाचली उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार। अब समाचार विस्तार से।

ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह लेबनान में हो रहे इसराइल हमले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून की रात शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे, जिसमें हॉर्मुज को खोलने और लेबनान में हमले बंद करने की शर्तें थी। ट्रंप की पहल पर 19 जून की रात इसराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। हालांकि सीज फायर के ऐलान के 8 घंटे बाद ही इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उच्च शिक्षण संस्थानों के सौगज के दायरे में अभी भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से गठित उड़नदस्तों की जांच के दौरान कई शिक्षण संस्थानों के सौगज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई है। साथ ही जांच के दौरान सामने आया है कि कई संस्थानों में अधिनियम के तहत अनिवार्य चेतावनी बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। इसको लेकर उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया है और निर्देशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान मुख्य द्वार, प्रवेश एवं निकास द्वारों सहित प्रमुख स्थानों पर निर्धारित चेतावनी बोर्ड तत्काल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी और पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को पानी उपलब्ध करवाने जैसी समस्या का समाधान निकट भविष्य में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में निकलेगा। शिमला के होटल पीटर हॉफ में आयोजित 2 दिवसीय 22वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद स्थायी समिति बैठक में इस विषय को लेकर बात आगे बढ़ी है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा व बाढ़ के हालात से निपटने के लिए रणनीति बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2024 और अक्टूबर 2025 में स्वीकृत किए गए हिमाचल के 5 नए केंद्रीय विद्यालय पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हैं। इनमें रिडी कोठेड़ा, थुनाग, गोकुल नगर, अपर बंजाल व नंदपुर और पांटा साहिब जिला सिरमौर का केंद्रीय विद्यालय शामिल है। केंद्रीय शिक्षा विभाग के अनुसार किसी भी नए केंद्रीय विद्यालय को शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को निःशुल्क उपयुक्त भूमि, किराया मुक्त स्थायी भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। इन 5 विद्यालयों के मामले में ये शर्तें पूरी नहीं होने के कारण अभी तक शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब, लाल चावल, चर्मा, बांस और अन्य विशिष्ट हिमाचली उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलेगा। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ के 3 करार किए हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों और सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में हिमफेड ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार की राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ 3 महत्वपूर्ण सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को योग्य घोषित करने की मांग खारिज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पोस्ट कोड 721 के तहत भर्ती और पदोन्नति नियमों के प्रावधान के अनुसार कोई भी याचिकाकर्ता जेबीटी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। सभी याचिकाकर्ता बीएड डिग्री धारक होने के आधार पर खुद को जेबीटी शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए योग्य समझ रहे थे। प्रार्थियों ने मांग की थी कि प्रतिवादी आयोग का निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं यानी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी पद के लिए योग्य समझे और मेरिट के आधार पर परिणाम तैयार करें। उनकी ये भी मांग थी कि उन पर अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त न लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर एस वाली ने शनिवार को नई सदस्यता योजना के तहत प्लेटिनम, गोल्डन एवं सिल्वर कार्ड और प्रदेश टूरिज्म विकास निगम की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उनका कहना है कि कार्ड पर पर्यटकों को एसपीटीडीसी होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन सेवाओं में विभिन्न प्रकार की रियायतें और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्लेटिनम कार्ड के लिए 99,000, गोल्डन कार्ड के लिए 75,000 रुपए और सिल्वर कार्ड के लिए 50,000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण,
बिक्री वितरण व आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा इन दवाओं के इस्तेमाल को कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है, इनसे जुड़े संभावित जोखिमों के मद्देनजर इनका लगातार इस्तेमाल लाभकारी नहीं माना गया है। एफटीसी दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या अधिक सक्रिय औषधीय तत्व निश्चित अनुपात में शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अब चेहरे के मिलान से ही छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया में ये बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए अब अपने चेहरे की डिजिटल पहचान के माध्यम से सत्यापन कराना होगा। इसी के साथ आज का ये खास बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी।

0: किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
1: अरे मरी क्या,
2: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
1: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
2: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
1: तिलक साहब जिंदा है?
2: तिलक?
1: हाँ।
2: अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है।
1: रसिक लाल, लोकमान्य तिलक, ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
2: मुझे माफ कर दीजिए।
1: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
2: रोड किसी के बाप का नहीं है।
1: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
3: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
4: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
3: या आपको एक फोन आएगा।
5: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
3: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
5: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते,
4: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
5: रिसीव करते वक्त नहीं।
4: तो याद रहे,
6: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
7: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
8: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
7: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
8: आप चिंता ना करें।
7: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है

0: आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
1: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
1: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
4: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
5: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक।
7: ओह नो।
6: पति ने दिए 400 करोड़ रुपए।
8: अमीर आदमी होगा ना?
6: अरे वो छोड़ो, ये सोचो कि कितना दुखी होगा जिसने अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए।

गुड मॉर्निंग धर्मशाला, कार्यक्रम हो गया है शुरू और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूं कि आज आप सभी ठीक ठीक होंगे और वीकेंड आप लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा। और आज फिर से हम पूरी एनर्जी के साथ अपने अपने कामों में वापस लौट रहे हैं, है ना। हम तो लौट आए हैं बिल्कुल अपने स्टूडियो में आपसे करने बातचीत। आपने ट्यून इन किया है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। बाईस जून में पहुंच चुके हैं हम। आज 22 जून है, सोमवार का दिन है। यह हमने आपको बता ही दिया है कि वीकेंड ख़त्म होने के बाद अगला दिन मंडे ही होता है। और अब से लेकर के 11 बजे तक रहने वाले हैं हम आप सभी के साथ। तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और एक हमारा राष्ट्रीय दिवस भी है, उस पर भी करेंगे आप सभी से बातचीत। साथ ही आपको बता दें कि 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला पर रेडियो सेट पर सुनने के साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पर लाइव

देख सकते हैं, हमारी दो फेसबुक पेज है, एक है गुंजन धर्मशाला और एक है रेडियो गुंजन 91.2 FM। तो इस समय हम लाइव हैं गुंजन धर्मशाला के पेज पर। कार्यक्रम में बने रहिएगा आखिर तक, क्योंकि कार्यक्रम में आज बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो कि आपसे भी संबंधित हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी से भी संबंधित हैं। तो अगर मौसम की बात करूं तो मौसम आप सभी ने देख ही लिया है बाहर कैसा है। धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान इस समय बना हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और बारिश का दौर जारी है। रिमझिम रिमझिम पड़ती फुहारों के बीच ही मैं भी स्टूडियो पहुंची हूं और यकीन जानो कि बहुत बहुत अच्छा लगा मन को, और ऐसा ही अच्छा आपके आने वाली भावी पीढ़ी को भी लगता रहे इसके लिए हमें बहुत सारी बातें करनी होंगी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसे सोचना होगा और हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे। क्या क्या है और कौन सा आज का खास दिवस है जिस पर बात करने वाले हैं, धीरे धीरे हमारे पिटारे से निकलेंगे ये सभी विषय। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम बड़े ही खूबसूरत से गीत के साथ।

0: सुना है, उसकी एक लाइन तो सीधे दिल पे दस्तक देती है। ऐसी मौसम फिर कब आएंगे। और आज 22 जून है, यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। हमने आपसे कि आज का दिन जो है बड़ा खास है, और आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के साथ ही देखो शुरुआत सुबह से ही हो गई है बूंदाबांदी की। वैसे भी वी आर ब्लेस्ड कि हम धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, और हिमाचल में भी खास करके धर्मशाला में, जो कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है बारिश के मामले में। समय में पहले नंबर पे होती थी, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पे आ गई है। और इस गाने को सुनते हुए एक अजीब सा डर भी लगता है, अगर हम अपने वर्षावनों को, इन जंगलों को हम नहीं बचा पाए, तो ये खूबसूरत से मौसम, ये रिमझिम बारिशें और ये ठंडी ठंडी फुहारें कभी वापस नहीं आएंगी। तो वर्षावन हमारी धड़कने हैं, हमारी धरती के फेफड़े हैं। और ये बात मैं कार्यक्रम में बार बार आपसे कहूंगी, अगर ये नहीं रहेंगे तो मौसम का ये जादू भी हमेशा के लिए खो जाएगा। आइए आज से ही संकल्प लें कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कह सकें कि वाह क्या मौसम है। और ऐसा ही एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब

तो दोस्तों ये गीत तो आप सुन ही रहे हैं प्यासा सावन फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। आपने सोचा है कि कहाँ को कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं और क्यों चले जाते हैं? भाई आखिरकार मेघा वहाँ क्यों जाए जहाँ पर कि कोई उन्हें पुकारने वाला ही ना हो? जहाँ उन्हें पुकारने वाले घने जंगल होते हैं वहीं तो जाते हैं मेघा। और ये अगर ये जंगल हैं तो मानसून है, और अगर मानसून है तो ज़िंदगी है। लेकिन अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो मेघा आएगा ज़रूर, पर बिना बरसे ही लौट जाएगा। तो आज इस वर्षा वन पर दिवस पर आइए एक वादा करते हैं, सिर्फ बादलों को मत पुकारिए, उन जंगलों को भी बचाइए जो उन्हें खींच करके लाते हैं। पेड़ लगाएं, जंगल बचाएं।

अगर आम जनता को ये वैज्ञानिक सच आसानी से समझ आ जाए कि जंगल और बारिश का आपस में कितना सीधा संबंध है, तो हमारे लिए ये काम आसान हो जाएगा कि ये जो मेघ हैं ये हमेशा ही ऐसे बरसते रहेंगे।

और ही बसानी पड़ जाएगी इस तरह से अगर ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा तो। और हम इसी गीत के साथ, प्यासा सावन का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और सुरेश पाड़ेकर की आवाज़ों में, और इसके साथ बढ़ते हैं हम आगे प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल हमीरपुर जिले के जोल सप्पर स्थित मेडिकल कॉलेज में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने इसी परिसर में नव निर्मित अस्पताल ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के अत्याधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस राशि से इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती कर रही है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण और वैश्विक नीति के चलते भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। इस बीच सांसद सुरेश कश्यप आज शिमला जिला में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक लेंगे। इस बैठक में जिला में चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के अलावा भावी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए शिमला जिला में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से बालिकाओं को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। 95 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी विभागीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रही है। जिला में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक अल्पसंख्यक समुदाय के 73 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 6 परिवारों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। टर्म लोन योजना के तहत 3750 लाभार्थियों को 115 करोड़ के करीब की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांव के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण 2 के चौथे दिन की शुरुआत योग और ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लेपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजधानी शिमला में इस बार ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हुए हैं। इस वर्ष मई व जून माह के दौरान अब तक शिमला में 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है, जिससे शहर में यातायात का अत्यधिक दबाव लगातार बना रहा। शिमला पुलिस के अनुसार शहर के भीतर ट्रैफिक सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई गेहूं की खरीद के मामले में सिरमौर जिला प्रदेश भर में पहले स्थान पर आया है। जिला में तय लक्ष्य के मुताबिक 2 गुना गेहूँ खरीदा गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल का घर द्वार पर ही उचित मूल्य मिला है। अधिक जानकारी हमारे सिरमौर जिला संवाददाता के साथ।
3: गेहूँ खरीद के लिए जिला सिरमौर पूरे हिमाचल में पहले स्थान पर आंका गया है। जिला में 1,000 क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले यहां पर 1,977 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। जिला में 2 खरीद केंद्र बनाए गए थे, जो पावता साहिब और धोलाकुआ में स्थापित किए गए थे, जहां जिला के 640 किसानों ने अपना गेहूं बेचा। सरकार द्वारा इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। खास बात यह भी रही कि 3 दिनों के भीतर यहां किसानों को ऑनलाइन उनके खातों में पेमेंट की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: आज प्रदेश भर में स्कूलों में मिड डे मील वर्कर्स 1 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। सीटू के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने आज काम न करने और शिमला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये जानकारी देते हुए यूनियन के राज्य प्रभारी जगत राम ने बताया कि मिड डे वर्कर्स वेतन में 17 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन वर्कर्स को 10 महीनों की बजाय 12 महीनों का वेतन भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए आज प्रदेश भर से आए मिड डे मील वर्कर्स शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक रैली प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराएंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन मॉनसून के निकट पहुंचने का असर देखने को मिलेगा, जिससे राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जून माह में अभी तक सामान्य से 20% कम वर्षा हुई है। विभाग का मानना है कि इस वर्ष मानसून धीमा चल रहा है, जिससे प्रदेश में मानसून के पहुंचने में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, हिमाचल करेगा खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी की दावेदारी। पंजाब केसरी ने लिखा है, खेलो इंडिया गेम्स हिमाचल में करवाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, आर्थिक स्थिति सुधरते ही बोर्डो निगमों में भी OPS। हिमाचल में प्रीपेड मीटर के बिल पर बिजली बोर्ड देगा 1.50% की छूट, पंजाब केसरी की एक खबर है। प्रदेश में मौसम का डबल बूस्टर, बरसात के बाद तेज धूप से बढ़ेगा सेब का आकार, बागवानों को मिलेंगे अच्छे दाम, दैनिक भास्कर की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व विकास के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदम। प्रदेश में हुई गेहूं की खरीद में सिरमौर जिला अग्रणी, निर्धारित लक्ष्य से दोगुने

देता हूँ। तो फिर से आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और आप सुन रहे हैं अपने शहर का एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रिक्वेंसी 91.2 FM। आज 22 जून है यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या सुबह सुबह जंगल की बात। जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए शायद ये नई बात है, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं आज है रेन फॉरेस्ट डे। तो भाई सुबह सुबह जंगलों की बातें, सुबह सुबह जब आप आँख खोलते हैं तो कोई ऐसा मधुर संगीत सुनते हैं जो चिड़ियाँ गाती हैं आपके आसपास में कहीं? अगर सुनते हैं तो आप बहुत लकी हैं। इसका मतलब आपके आसपास में छोटा मोटा जंगल है या कुछ पेड़ पौधे हैं जहाँ पर कि उनका रैन बसेरा है और वो वहाँ से उठती हैं और आपको वो मधुर संगीत सुनाती हैं। इसके साथ तो रोज़ रोज़ ऐसा होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जंगल की, क्योंकि ये जंगल अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा जीवन भी नहीं होगा। ये हमारी धरती के सुपर हीरो हैं जो कि फ्री में हमें फुल ऑक्सीजन और धांसु वाइब्स भी देते हैं, फुल एनर्जी देते हैं पूरे दिन भर काम करने की। अब आप सोचेंगे कि भाई जंगलों में तो हम रहते नहीं तो वो हमें एनर्जी कहाँ से देंगे? यही तो गलती है। अगर नहीं रहते हैं तो कुछ अपने आसपास में ऐसा कीजिए कि आपको वैसी वाइब्स आए कि आप कहीं हरे भरे इलाके में रहते हैं। कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होंगी आगे और बने रहिएगा आज पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ, मजा आने वाला है आप सभी को। तो आज का शो होने वाला है एकदम ग्रीन, एकदम क्लीन और सुपर एनर्जेटिक। तो चलिए मौसम को बनाते हैं और भी कूल और एक सुपर हिट ट्रैक के साथ। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कौन सा गाना प्ले करने वाली हूँ मैं अभी? नहीं, लीजिए सुनिए।

तो गुरु फिल्म का ये गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में। आप चलिए रेडियो सेट्स पर जो हमें लाइव देख रहे हैं कमेंट्स कर सकते हैं आप हमें यहाँ पर कि कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है।

का ये गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज में। कैसा लगा आपको ये गीत? कुछ रिलेट कर पाए आप लोग? भाई देखो, वर्षा तभी होगी और ये मेघ तभी बरसेंगे जब हमारे वर्षा वन जिंदा रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन जो हैं वो अमेज़न के जंगल हैं। लेकिन अगर हम हिमाचल में आ जाएं और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वर्षा का मौसम जून से सितंबर के बीच में रहता है और इस दौरान राज्य के निचले और मध्यम इलाकों में भारी बारिश भी होती है, जैसे खूबसूरत हरे भरे जंगल और झरने भी देखने को मिलते हैं, जबकि लाहौल स्पीति जैसे ऊँचे इलाके शुष्क रहते हैं। अगर हम वर्षा वनों की बात करें तो यहाँ उपोषण कटिबंधीय वन यानी कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से साल और बांस यानी बैम्बू के घने जंगल शामिल हैं। और यहाँ देवदार, ओक और रोडोडेंड्रॉन के घने जंगल भी पाए जाते हैं। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो वही हमारा प्यारा धर्मशाला। जी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा लगभग 3400 मिलीमीटर दर्ज की जाती है और इसे भारत के मानसून के दौरान सबसे हरे भरे और धुंधले क्षेत्रों में से एक बनाता है।

या कलगा यानी पार्वती घाटी चलते हैं तो पाइन के घने जंगलों और हरियाली के बीच शांति बिताने के लिए ये भी एक लोकप्रिय जगह है। यानी कि इन वर्षा वनों का महत्व भी हम आपको बता रहे हैं कि आप वहां पर घूमने भी जा सकते हैं, खूबसूरत वादियां देख भी सकते हैं। जैसे कहते हैं जंगल सफारी, है ना। की बात चल ही गई है तो आगे आने वाले समय में अभी जंगल की और बात भी करेंगे हम, और उसमें बहुत सारे जो जानवर होते हैं ना उसकी बात भी करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ यूं ही कार्यक्रम में।

0: बेटा छा।
1: प्यास कैसे बुझेगी तभी ना जब वर्षा होगी, पानी हमें मिलेगा और वो भी स्वच्छ पानी। तो वर्षा वन क्षेत्रीय और वैश्विक वर्षा पैटर्न को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए भारत में पश्चिमी घाट और पारिस्थितिक तंत्र वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से मानसून चक्र को बनाए रखते हैं। पृथ्वी की 50% से अधिक वन्य प्रजातियां निवास करती हैं, जो कि इन्हें जैविक जीवन का अपूर्णीय भंडार बनाती हैं।

और इन पारिस्थितिक तंत्रों का पारिस्थितिक महत्व होने के बावजूद ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई, अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और कृषि के कारण इन हर साल स्विट्जरलैंड के आकार के लगभग बराबर या फिर 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर वर्षा वन जो है वो नष्ट हो रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप सोचिए कि क्या किया जा सकता है।

तो किया ये जा सकता है। हमारी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके खाद्य और घरेलू सामान टिकाऊ तरीके से उत्पादित किए गए हैं या नहीं, उन पर रेन फॉरेस्ट अलायंस प्रमाणित मुहर देखें, क्योंकि ये हमारे काम हैं श्रोताओं। और स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व वाले संगठनों और पहलों का समर्थन करें जो ऐतिहासिक रूप से अछूते क्षेत्रों के सबसे प्रभावी संरक्षक रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल का समर्थन आप कर सकते हैं। और इन महत्वपूर्ण जैव मंडलों के बारे में स्वयं को और दूसरों को शिक्षित करने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक एनवायरमेंटल पोर्टल जैसे संसाधनों का आप उपयोग कर सकते हैं।

और ये जो गीत आप सुन रहे हैं, ओ घटा सांवरी, तो भाई घटा तो आपको हम क्योंकि धर्मशाला में रहते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ये जो सावन है, ये सावन की जो फीलिंग है ये आती ही रहती है, गर्मियों में भी आती रहती है। लेकिन ये जो गीत है अभिनेत्री फिल्म का, लता मंगेशकर ने गाया है, ये गीत अपने आप में सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है। और घटाओं की बात करें तो घटाएं तभी आती हैं जब हमारे पास वर्षा वन है। बच्चों को भी सिखाया जाता है ना कि किस तरह से वाष्पीकरण होता है, वर्षा होती है फिर वाष्पीकरण होता है और फिर उसके बाद जाकर के बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो फिर वो जो पेड़ हैं, वो पेड़ जो हैं वो सहायक होते हैं उन बादलों को नीचे खींचने में, और तब जाकर के बारिश होती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बच्चों को सिलेबस बुक्स में होती हैं, बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि बारिश कैसे होती है। बच्चों के मनों में बहुत सवाल होते हैं ना, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं तो उन्हें ये सब बातें बताई जाती हैं। लेकिन अब हम आपको अगर ये कहें कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़ॉन जो हैं, उन्हें इस प्लैनेट का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है बताएं आपको?

क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आती है। और सुनो, ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल पार्टी क्लब्स हैं। जी, हमारे लिए नहीं, उन जीव जंतुओं के लिए, उन जानवरों और यूनिक पेड़ पौधों के लिए जो कि 24 घंटे वहाँ पर चिल करते हैं। और इस कूल जगह को अगर बचाना है, बचाना तो है ही, बनता है ना हमारा बचाना।

अरब आदमी और इंसान फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में, लेकिन साथ में करेंगे आपसे बातचीत भी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत तो महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में। तो दोस्तों, हम अपने रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, और अगर उनको स्क्रॉल करना है, हमको पसंद है, ये बात अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन आज स्क्रॉलिंग के साथ साथ एक छोटा सा गोल और भी सेट करते हैं कि कागज़ वेस्ट करना बंद करते हैं, डिजिटल लाइफ को ऑन करते हैं। जो आने वाला मानसून है, प्री मानसून है या फुल फ्लेज्ड मानसून आने एक पौधा लगाना तो बनता है। कोई हमारा चाहिए। स्टेटस पर सेव ट्रीज लगाने से बेहतर है कि जमीन पर एक पेड़ लगाया जाए और उसकी केयर भी की जाए। क्या बोलते हो, करते हैं प्रॉमिस? चलिए इसी प्रॉमिस के साथ सुनवा रहे हैं आपको ये गीत जो अभी आप सुन ही रहे हैं अपने रेडियो से। फेसबुक पेज से भी लाइव यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम को।

जी नीले पर्वतों की धारा तो पर्वतों से निकल करके धरती पर आ गई है, परंतु क्या हमने अपनी जिम्मेवारियां पूरी की? क्या हम करते हैं? क्या हम सोचते हैं पर्यावरण के बारे में? बिल्कुल भी। हम कब से बात कर रहे हैं, आपको पता है जब धरती दिवस था ना 22 अप्रैल को, तब से हम शुरू हो जाते हैं बात करना कि आज अर्थ डे है, उसके बाद और बड़े सारे दिन आते हैं। अभी अभी एनवायरनमेंट डे गुजरा है, उस दिन भी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे पौधे लगाए। वापस जा करके कभी देखा उन पौधों का हो क्या रहा है? कहीं उनको कोई जंगली जानवर खा गया है, या किसी ने उसको नष्ट कर दिया, या वो पानी के अभाव में सूख ही गया? वैसे पानी का अभाव हमारे यहाँ पर नहीं होता है। हमारा जो प्रदेश है, ये धर्मशाला जो है हमारा, ये यहाँ पर समय समय पर बारिश होती ही रहती है, और कुछ लावारिस पेड़ पौधे भी होंगे अगर, तो उन्हें भी पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिलता ही रहता है। लेकिन हम ये सोच करके बैठ जाएं कि प्रकृति सब कुछ देख रही है, अपने आप ही सब हो जाएगा, तो हमारी जिम्मेवारी कहाँ चली जाती है फिर? तो एक तो ये गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ अब कार्यक्रम में आगे, वो आ रहा है, और साथ ही में इस बात का प्रश्न चिन्ह हम सभी के ऊपर कि हम जिंदा हैं तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना पार्ट अदा कर रहे हैं इस धरती पर, वो भी नहीं कर रहे हैं, और फिर एक दिन हम वापस चले जाएंगे। बस इसीलिए आए हैं हम धरती पर, कोई

तो सुन रहे हैं आप ये गीत, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, और हम ही को ये स्वर्ग जमीन पर उतारना है, जैसे कि किया था खेजड़ी का जो वृक्ष है राजस्थान में, वहाँ पर उसे बचाने के लिए, वैसे उसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और इसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं? शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में। सिंह एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं पर बहुत बात लिखी और बहुत सारे गीत भी बनाए, उन्हीं में से एक ही गीत है। और भी मिले थे।

जी हाँ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारा जमीन पर। फिर से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बार बार यही कहेंगे कि अपने रोल सिर्फ सिर्फ खाने पीने और अपने परिवार पालने, और बस फिर एक दिन ये सोच करके कि हमने तो बहुत अच्छी तरह से जी लिया, चले जाने तक सीमित मत रखिए। इसके आगे भी बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत कुछ करना है हमें ज़िंदगी में। केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने समाज के बारे में भी सोचना है। और हम तो कम्युनिटी रेडियो पर काम कर ही रहे हैं, आप सभी से बातचीत कर ही रहे हैं। और एक बात बताऊं, जो बातें यहाँ से हम करते हैं ना, वो हमारे दिल से निकलती हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से आपसे बात करने के लिए हम यहाँ आ गए और आपसे बतिया लिया, अपना काम पूरा किया और ख़त्म किया और चले गए। नहीं, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे ज़रूर हमें भी, खास करके मैं अपनी बात अगर करूं तो वाकई में पर्यावरण के लिए कुछ ज़रूर है मेरे माइंड में भी, और मैं वो बहुत जल्द करने वाली हूं। और इसे आप जाकर के देख सकते हैं हमारे भी फेसबुक पेज पर। अभी तो आप रेडियो गुंजन फेसबुक पेज पर लाइव हैं 91.2 FM पर। आप वो सारे कार्य देखना चाहेंगे तो आप प्रिया हिमाचल से पर भी जाकर के देख सकते हैं।

आज से हम कई साल पीछे चले जाएं, तब की बात है। तब तो ऐसा नहीं था कि जंगल नहीं होते थे, पेड़ नहीं होते थे, पेड़ों का महत्व बहुत ज़्यादा था। लेकिन उस जगह पर जहाँ पर कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त करने हेतु खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया था। पेड़ की कहानी पर्यावरण संरक्षक साहस और बलिदान की सच्ची और प्रेरणादायक ऐतिहासिक गाथा है। फिर क्या हुआ होगा? अच्छा, आगे कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो हम उनको बता देना चाहते हैं कि एक लेडी, जी हाँ, उस वक्त एक महिला आगे आई और उन्होंने हिम्मत दिखाई। अमृता देवी बिश्नोई नाम की वो महिला थी। बिश्नोई समुदाय जो है वो पेड़ों को पूजनीय मानता है, अभी तक ऐसा है। अमृता देवी नाम की महिला ने इसका विरोध किया और कहा कि सिर कटने से भी पेड़ नहीं कटने चाहिए, यानी कि हमें अपना सिर कटवाना मंजूर है, पेड़ हम नहीं कटने देंगे। और फिर वो पेड़ों से लिपट गई कि अगर आपको इन्हें काटना है तो पहले हम पर वार करना होगा। और उसके बाद उनके साथ मिलकर के कुल 363 बिश्नोई समुदाय के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। घटना के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। ये 50 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में भी जीवित रहता है, जमीन में नमी बनाए रखता है और मरुस्थल को फैलने से रोकता है। तो इस पेड़ का महत्व वहाँ की जो समुदाय था, जनता थी, वो जानती थी, लेकिन क्या राजा को नहीं पता था? इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पशुओं के लिए पौष्टिक चारा बनाती हैं। फलियों से केर सांगरी की प्रसिद्ध राजस्थानी सब्जी बनती है। इसकी जड़ें जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं। अद्वितीय बलिदान की याद में राजस्थान के खेजड़ी गांव में हर साल सितंबर के महीने में मेला भी लगता है। ये ऐतिहासिक घटना जो है बाद में उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। और चिपको आंदोलन की बात भी हम इसी कार्यक्रम में करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।

कितना कीमती है क्या आप जानते हैं कि हमारी वर्षा वन जो बादलों को धरती पर लाते हैं आज संकट में है। जल है, जंगल है तो जल है, और जल है तो कल है। कम से कम एक पौधा हमें लगाना होगा और प्रकृति की रक्षा करनी है।

0: जी हाँ दोस्तों, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़धानी दे,
1: अल्लाह में
0: तो पुराना गीत है ना ये, आप लोगों ने जरूर सुना होगा।
2: अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़धानी
0: है। ये उस वक्त का गीत है जब उस पिक्चर में, यानी कि कौन सी मूवी थी ये, पलकों की छाँव में राशा भोसले की आवाजें हैं इस गीत में और साथियों ने भी साथ दिया है। आज ये किया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मेघ बरसाओ, क्योंकि शायद सूखा पड़ रहा था या उसकी आशंका थी और जनता त्रस्त थी एक एक बूंद पानी के लिए।
2: गैया बैकुंठ पार कराए तहर के तेरा पानी।
0: हमें पानी की एक एक बूंद का की जो कीमत है वो पता चलती है जब वाकई में हम बहुत प्यासे होते हैं या फिर हमें बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता है। अभी तो सब कुछ अच्छा चला हुआ है, अभी हमारे लिए सब ठीक है, लेकिन जब ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमने क्या खो दिया है।

आपको हम चिपको आंदोलन के बारे में बताएं। एक और बात भी है हमारे माइंड में, वो है हमारा जंगल। जंगल सफारी की बात हमने कर ली थी कि आप जंगल सफारी पर जब जाते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है ना, कितना अच्छा सा एहसास होता है वहाँ पर जाकर के। कभी कोई गया हो तो उसे ज़रूर पता होगा कि कैसी शांति मिलती है मन को, एक अलग सी ही। क्योंकि हम जो है ना वो कंक्रीटों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कंक्रीटों के जंगलों में बसने के लिए हम जा रहे हैं। हम ये ढूंढते रहते हैं कौन सी जगह पर हमें सस्ता सा फ्लैट मिल जाए जो कि अच्छा हो, जहाँ पर कि सब फैसिलिटीज़ भी हो, हवा पानी धूप भी आती हो। तो फिर हम अगर फ्लैट्स ही चाहते हैं तो फिर बाकी ये प्रकृति की चीज़ें क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलता है ना, इसीलिए धूप भी चाहिए है, ठंडी हवा भी चाहिए है, गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में धूप चाहिए है, और पीने के लिए पानी भी चाहिए है। ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो हमें चाहिए, लेकिन आती कहाँ से हैं? आएंगी तो प्रकृति से ही, नेचर से ही। और इसके लिए सबसे ज़रूरी हैं हमारे वर्षा वन, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो हवा तो हो ही नहीं सकती है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? सब कुछ इंटरमिंगल्ड होता है, सब चीज़ें हाथ में हाथ लेकर के चलती हैं। SDG की ट्रेनिंग थी मेरी कल या परसों, हाँ परसों, पूरा दिन हमने उस ट्रेनिंग में लगा दिया। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो गोल्स हैं हमारे, लक्ष्य हैं उसके ऊपर। और आपको पता है 17 गोल हैं, और 17 गोलों को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन गोल्स को किस तरह से हम याद करें और किस तरह से हमें वो एक से एक साथ साथ में जो है लिंक करके बताए गए कि ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, तो हमें समझ में आया कि भाई सब कुछ तो आखिरकार लिंक्ड ही है और सब कुछ हमारे लिए ही है। अब हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उसको अच्छे से कैसे चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं और किस तरह से हम अपना पर्यावरण बचा सकते हैं। SDG का मकसद यही है। वर्कशॉप में मैंने जो सीखा है ना वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, और तभी मेरे माइंड में एक बात आई है जिसे कि अब मैं जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि अपने अपने लेवल पर हर एक व्यक्ति ये ठान लेना कि बस मैं ये काम करूँगा केवल और केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए, बहुत अच्छा होगा।

0: हमने आपसे कहा था श्रोताओं कि हम चिपको आंदोलन की बात करेंगे आपसे, पहले गीत सुन लेते हैं फिर आगे इस बारे में बात करती हूँ।
1: धरती का प्यार पले।
0: और हमारे फेसबुक पेज से लाइव हमें जो देख रहे हैं उनका वेलकम है, कृपया करके आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको।

प्रकृति का प्यार तो हमेशा ही पलता है और हम इसी बात को तो आज कार्यक्रम में आपसे बार बार कह रहे हैं।

श्रोताओं, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में तो आपने जान लिया कि 1970 में क्या हुआ था। 1730 में, क्षमा कीजिए, ये आंदोलन हुआ था और उसके बाद चिपको आंदोलन शुरू हुआ 1973 में। और ये आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। खेल का सामान बनाने वाली एक विदेशी कंपनी को सरकार ने व्यावसायिक कटाई के लिए पेड़ों का ठेका दिया था, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। चिपको शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है कि किसी चीज के साथ चिपक जाना। तो बस वो सब पेड़ों से लिपट गए थे। जब कुल्हाड़ी लेकर के ठेकेदार आया तो ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया और कहा कि पहले हम पर वार करो, फिर पेड़ पर। और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी जैसे साहसी महिलाओं ने किया था।

हाँ, बगिया से सुंदर वो वन होगा कि कांटों से भी हम अपना घर सजा लेंगे। जरूरी नहीं है ना कि हर जगह फूल ही फूल मिलते हैं, कई बार अगर कांटे हों तो उससे भी जंगल बनाया जा सकता है। तो हम कह रहे थे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय वनों को बचाने के लिए 5000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की थी। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से हरे भरे पेड़ों को काटने पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। और जो कि अब अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो हम सामने ही देख रहे हैं 4 लेन के लिए कैसी कटाई हुई है। शाहपुर की तरफ चले जाएं तो वहां पर लोगों ने जिस वर्ष वो कटाई हुई उस वर्ष इतनी गर्मी महसूस की कि लोग कहने पर मजबूर हो गए कि पेड़ थे, हरा भरा था सब माहौल। लेकिन हाँ, अब क्योंकि कहते हैं ना तकनीकीकरण, और अगर हम विकास की तरफ देखें तो ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रूरी है तो उसकी जगह पर उतने पेड़ लगाए भी जाने चाहिए। लेकिन आपको पता है ना कि पेड़ कितनी धीरे धीरे बढ़ता है, और जब तक वो बढ़ेगा, जब तक बड़ा होगा, तब कहीं जा कर के हमारी अगली पीढ़ी को ये सुविधाएँ मिलेंगी, ये ठंडी हवाएँ मिलेंगी।

और इसी तरह से साउथ में अप्पी को आंदोलन भी हुआ था कर्नाटक में 1883 को। उसका भी अर्थ ग्ले लगाना ही, ग्लू लगाना ही होता है, और यह आंदोलन भी सीधे तौर पर चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सलकानी जंगलों से शुरू हुआ।

की पश्चिमी घाट जो भारत के प्रमुख वर्षा वनों और जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, व्यावसायिक कटाई के कारण नष्ट हो रहे हैं। उसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपक करके उन्हें कटने से बचाया। पूरे दक्षिण भारत में पर्यावरण के प्रति अलख जगाया। और हमें अब इंतजार है कि हिमाचल में ऐसा कब होगा। कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं जो लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न तो प्रशासन के कानों पर और ना ही हम लोगों के कानों पर जू रेंग रही है। हम सोचते हैं कोई एक बेचारा बोल रहा है, बोलता रहे बस, उसको ना हम पता क्या करते हैं, हम उसे सनकी मान लेते हैं कि इसमें तो बस सनक है। कम से कम आप भी तो वैसी सनक दिखाइए, किसी चीज़ के लिए दिखाइए तो सही, तब तो समझ में आएगा कि वाकई में आप सनकी हैं या किसी चीज़ के लिए, पर्यावरण के प्रति आप जागरूक हैं।

ये गीत अभी आपने सुना लता मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत था। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि एक साइलेंट वैली आंदोलन भी हुआ है 1973 से लेकर के 1980 तक केरल में। भारत के सबसे पुराने और घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में से एक था ये आंदोलन। कुंतीपुझा नदी पर एक पनबिजली बांध बनाने की योजना थी, जिससे इस बेहद प्राचीन वर्षा वन का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। केरल शास्त्र साहित्य परिषद और आम जनता ने मिलकर के इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि बांध बनाने से यहाँ रहने वाले अत्यंत दुर्लभ जीव जैसे कि शेर, जैसी पूंछ वाले बंदर, लॉयन टेल्ड मकाऊ हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। और जनता के भारी दबाव के बाद 1980 के दशक की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। 1984 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित करके सुरक्षित कर दिया। और इसी तरह से एक जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में भी हुआ, झारखंड में 1982 में। इन पर जब हम बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ में आपको गीत भी सुनवाते चलें। और हम बार बार कह ही रहे हैं कि ये जो वर्षा वन होते हैं या फिर जो हमारे वन होते हैं ये बारिश करवाने में सहायक होते हैं। इसीलिए साथ साथ में आज हम आपको वर्षा वाले गीत भी सुनवा रहे हैं, क्योंकि बाहर भी तो वैसा ही मौसम है ना।

था। ये आंदोलन 1982 में सिंहभूमि जिले के आदिवासी समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। सरकार यहाँ की प्राकृतिक साल के जंगलों को काटकर उनकी जगह महंगे और व्यावसायिक महत्व के वाले सौगान के पेड़ लगाना चाह रही थी। आदिवासियों ने इसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ माना और नारा दिया कि सौगान हमें नहीं चाहिए, साल हमारा जीवन है। इस आंदोलन ने आदिवासियों के वन अधिकारी की बात को पूरे देश के सामने रखा। तरह से ये सारी जो कहानियाँ हमने आपको सुना दी हैं, मतलब सच्ची कि हमारे वनों को बचाने के लिए कैसे कैसे बलिदान हुए और सबसे ज़्यादा महिलाएं ही आगे आई हैं। यानी कि अब पर्यावरण बचाने की जिम्मेवारी भी उन्होंने ही ले ली है। तो हम भी घर की महिलाओं से ही आग्रह करना चाहते हैं कि बच्चों को तो स्कूलों में बहुत कुछ सिखाया, परंतु घरों में भी उनसे बात की जाए और पेड़ों पौधों के महत्व बताए जाएं। मन में पानी बहना ये दीवानी शान। शुरुआत की जाए एक छोटे से पौधे को लगा करके और एक एक बच्चे को एक एक गमला दे दिया जाए, उसकी जिम्मेवारी दे दी जाए कि आपने इस समय पर इसको पानी देना है, ऐसे ऐसे इसकी संभाल करनी है, इस तरह से खाद देनी है। थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ दे करके बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता जगाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अच्छा भी लगेगा और फिर वो बड़े होकर के एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे, कम से कम अपने पर्यावरण के बारे में तो ज़रूर सोचेंगे।

सुना दोस्तों आपने कि बादल कैसे गरजता है। बेताब फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।

90.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और बहुत देर के बाद हमने बताया ना आपको कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला है, और साथ ही उन सभी श्रोताओं को भी बहुत मुबारक हो जो कि आज के दिन अपना कोई ना कोई खास दिवस मना रहे हैं। आज हमने कोई विचार लिया नहीं है कार्यक्रम में, लेकिन आज का जो सारा कार्यक्रम है वो ही एक विचार है। ज़रूर विचार कीजिएगा कि किस तरह से आपको अपने ये वन बचाने हैं, किस तरह से पर्यावरण बचाना है, कैसे हमें ये जो ऑक्सीजन है ये चाहिए है आगे के लिए भावी

अगर हम बात करें ना बच्चों की, तो जो बच्चे हैं उनको तो बचपन से ही कहानियों, कविताओं, गीतों के माध्यम से ये बताया बताया जाता है कि हमें प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बना करके चलना है। आइए कुछ सुनवाती हूँ आपको।

देखा, पेड़ों में ताली बजी और पत्तों की सीटी बजी। आ गया याद आपको कुछ? जी हाँ, ये वही द जंगल बुक का सॉन्ग है, मोगली वाला। कितने प्यार से देखते थे ना हम वो वाला सीरियल मोगली, जिसमें एक गाना था बड़ा ही खूबसूरत। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। रुडयार्ड कब किपलिंग ने जब ये किताब लिखी या फिर जब डिज्नी ने इसे इस पर फिल्म बनाई, तो उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, उसका उद्देश्य था इंसानों को ये याद दिलाना कि जंगल कोई बाहरी जगह नहीं है बल्कि हमारा पहला घर है। ये कहानी ये दर्शाती है कि अगर इंसान जानवरों को सम्मान दे तो वो हमारे रक्षक भी बन जाते हैं। जैसा कि वो मूवी है ना हाथी मेरे साथी, वो तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना।

तो मोगली इस थीम का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो इंसान होकर भी दिल से पूरी तरह एक जंगली ही था, और ये याद दिलाता है कि हमारे फेफड़े और हमारी सांसें इन्हीं जंगलों से जुड़ी हुई हैं। कहानी में शेर खान का डर, हाथियों का अनुशासन और बालू की समझदारी ये दर्शाती है कि इकोसिस्टम में हर जीव का संतुलन कितना ज़रूरी है। वर्षा वनों को भी धरती पर मानसून और पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए बचाया जाना ज़रूरी है।

0: चल रहा है।
1: जंगल जंगल बात चली है, पता चला है।
2: जंगल जंगल बात चली।
3: तो जंगल जंगल क्या चला है भाई? हमारे को तो अभी कुछ दिन पहले जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तभी देखने को मिला कि जंगल जंगल आग लगी है, लेकिन उसको बुझाने का प्रयास कितने लोगों ने किया? क्या वहाँ से गुजर रहे लोगों ने किया? क्या उन्होंने फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस को फ़ोन किया, या सिर्फ उन्हीं लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया, उसे बुझाने का प्रयास किया जो कि आसपास में वहाँ पर रह रहे थे, जिन्हें कि ये अंदेशा था कि ये आग कहीं हमारे घर तक ना पहुँच जाए। होता यही है ना कि हम लोग अपने लिए डरते हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए। जंगल का बेशक नुकसान होता रहे, कोई बात नहीं। सोचिए, विचार कीजिए कि अगर आप वहाँ से गुजर रहे थे तो क्या आपने इस बात पर गौर किया? खैर, हम बात कर रहे थे मोगरी द जंगल बुक के बारे में। और भी बहुत सारी जो मूवीज़ हैं वो हमारे हॉलीवुड में, बॉलीवुड में बनी हुई हैं जंगलों के बारे में। तो अभी अभी जो धुन आप सुन रहे हैं उसने तो हम सबको बचपन के उस दौर में पहुंचा ही दिया है जहां पर कि मोगली के साथ जंगलों की सैर हम भी करते थे। हमें भी बहुत अच्छा लगता था, केवल वो बच्चे देख करके एंजॉय नहीं करते थे, हम बड़े भी बैठ जाते थे कि भाई आखिरकार ये बच्चे देख क्या रहे हैं। उस वक्त माता पिता के पास इतना समय होता था कि वो अपने बच्चों की हरकतों पर, अपने बच्चों की जो भी वो चीज़ें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन पर भी वॉच रखें, यानी कि नज़र रखें। आजकल हमें उतना समय भी नहीं है। उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, सिर्फ टीवी एक मनोरंजन का साधन होता था, लेकिन फिर भी हमारे पास समय होता था। और आजकल सब कुछ होते हुए भी हमारे पास समय की कमी होती चली जा रही है, तो हम कहाँ अपने पर्यावरण के बारे में सोचेंगे। सिर्फ एक बच्चे और भालू की दोस्ती नहीं थी, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इंसान चाहे जितने बड़े महलों में रह लें, हमारा असली नाता इन्हीं पेड़ों और जंगलों से है। मोगली को पालने के लिए पूरे जंगल ने जिम्मेवारी उठाई। और आज जब हम विश्व वर्षा वन दिवस मना रहे हैं जिसकी थीम है द फॉरेस्ट विद इन यू, यानी कि आपके भीतर का जंगल, तो हमें सोचना होगा। आज हमारे लालच के शेर खान ने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। अगर मोगली का वो हरा भरा जंगल नहीं बचेगा तो बादलों को पानी देने के लिए कौन बुलाएगा? आज मोगली के उस जंगल को, हमारे इन वर्षा वनों को बचाने का हमें संकल्प लेना है। एक पौधा आज ज़रूर लगाएं, जैसा कि मैं कह ही रही हूँ कार्यक्रम में आप सभी को, और या तो खुद या फिर अपने बच्चों को उसकी देखभाल की जिम्मेवारी दे दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी कह सके कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। आइए सुनते हैं ये गीत, दोबारा से सुन लेते हैं एक बार, अभी तो मैंने आपको तोड़ तोड़ के सुनवाया है।

0: और ध्यान रख, पुत्र घबराने की लोड़ नहीं है, ठीक है।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो कैसा लगा फिर आपको ये गीत, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये भाई पेड़ ये कह रहे हैं कि वर्षा हम ही से होती है, तो हमारे पास भी आ जाइए और देखिए कि हमारी क्या दशा है इस वक्त।

श्रोताओं, आज जंगल की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है हमारा पूरे विश्व का रेन फॉरेस्ट डे। और इसी के साथ हम हिमाचल की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। आइए ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं हम, जो कि गाया है प्रिया हिमाचली ने और साथ में रैपिंग में भी साथ दिया है कई लोगों ने। बड़े ध्यान से ये गीत सुनिएगा क्योंकि इसमें आगे जो रैपिंग की गई है थोड़ी सी, थोड़ा सा पोर्शन है, उसमें एक संदेश भी दिया गया है आप सभी लोगों को।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना प्रिया हिमाचली की आवाज़ में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो कि जंगल थीम पर ही बनी है। एक तो फिल्म है जिसका नाम है जंगल, वो तो राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी ये बेहतरीन फिल्म है, सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म। इसकी कहानी एक जंगल में पर्यटकों के एक समूह के अपहरण और पुलिस ऑपरेशन पर आधारित है, जिसे घने जंगलों में फिल्माया गया है।

और एक काला पत्थर फिल्म है, हालांकि ये एक ड्रामा फिल्म है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा कोयला खदानों और उसके आसपास के बेहद जंगली और पहाड़ी इलाकों में फिल्माया गया है। हाथ ही मेरे साथ ही फिल्म को कौन नहीं जानता है। राजेश खन्ना की ये फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच के प्यार पर आधारित है, जिसमें कि जंगल का एक बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक चित्रण किया जाता है।

और इसके साथ ही एक फिल्म और है त्रिदेव। इस सुपरहिट फिल्म का क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस का एक बहुत बड़े प्राचीन मंदिर और उससे सटे घने जंगल के सेट पर उसे फिल्माया गया था। और ये फिल्म जो है काल फिल्म बनी थी, 2005 में रिलीज हुई थी और एक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के रहस्यमय जंगल में सेट की गई। यहाँ पर कुछ दोस्त बाघों और जंगल के खतरों का सामना करते हैं। चलिए आज शाम को फिर बैठते हैं और कोई ऐसी ही फिल्म देखते हैं। बहुत सारी फिल्मों के नाम तो हमने आपको गिनवा दिए हैं, चाहें तो द जंगल बुक मोगली भी देख सकते हैं।

0: श्रोताओं, ये जंगल का पारिस्थितिक तंत्र ही है जिसके कारण हम भी जीवित हैं। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जीवंत और सांस लेती हुई दुनिया है जो सीधे हमारे जीवन को नियंत्रित करती है।
1: चल के, यूं मत चल के, रंग बदल के हमसे मिलने आए।
0: जैसे कि पेड़ पौधे, जंगली जानवर, कीड़े मकौड़े, पक्षी और सूक्ष्म जीव,
1: सबके दिल पे छाया है।
0: निर्जीव चीजें भी शामिल हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि मिट्टी, धूप, हवा, पानी और तापमान।
1: अरे मुस्कुराते हैं
0: पौधे, सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं। शाकाहारी जानवर, हिरण, हाथी वगैरह जो हैं पौधों को खाते हैं, और मांसाहारी जानवर, शेर, बाघ शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीव इन्हें सड़ा करके वापस मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। हमारे छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर पानी को रोक कर रखती हैं, जिससे कि भूमिगत जल का स्तर बना रहता है, और पेड़ों से होने वाली वाष्पीकरण बादलों को आकर्षित करता है और फिर बारिश करवाता है। तो घने जंगलों के पेड़ तेज बारिश के पानी की गति को धीमा करती है, उसकी जो जड़ें हैं मिट्टी को कस करके पकड़ती हैं, जिससे कि उपजाऊ मिट्टी बहने से बचती है और बाढ़ का खतरा कम होता है। हमारी आधुनिक दवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा जंगल की जड़ी बूटियों से आता है, जिससे कि इसके अलावा लकड़ी, फल, गोंद और शहद जैसे अनगिनत संसाधन हमें यहीं से मिलते हैं। तो अगर ये संतुलन बिगड़ गया, यानी कि इकोसिस्टम, तो फिर क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन और सारा का सारा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, जिसे कि आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो इसी के साथ ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? नो एंट्री पे एंट्री क्यों ली आपने?

0: मुझे माफ कर दीजिए।
1: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
0: रोड किसी के बाप का नहीं है।
1: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
2: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
3: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
2: या आपको एक फोन आएगा।
4: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
2: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
4: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
3: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
4: रिसीव करते वक्त नहीं।
3: तो याद रहे,
5: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
6: मुहूर्त कब का निकला?
7: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
6: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
7: आप चिंता ना करें।
6: चिंता का है कि? हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
7: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
8: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
9: तुम क्या खड़ा हो?
8: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
10: ले जाए पक्का?
8: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
11: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
12: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
13: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
12: हाँ बोलो।
13: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
12: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
13: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
8: गजब बेइज्जती है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? नो एंट्री पे एंट्री क्यों ली आपने?

0: मुझे माफ कर दीजिए।
1: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
0: रोड किसी के बाप का नहीं है।
1: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
2: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
3: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
2: या आपको एक फोन आएगा।
4: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
2: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
4: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
3: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
4: रिसीव करते वक्त नहीं।
3: तो याद रहे,
5: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
6: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
7: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
6: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
7: आप चिंता ना करें।
6: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
7: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
8: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
9: तुम क्या खड़ा?
8: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
10: ले जाएं, पक्का?
8: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
11: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
12: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
13: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
12: हाँ बोलो।
13: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
12: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
13: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
8: गजब बेइज्जती है।

0: हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो मन ऐसा होता है कि ये इतनी बड़ी सर्जरी कैसे होगी, इसके लिए हमें जो अंग है वो कहाँ से मिलेगा, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन रहती है। लेकिन अगर आप हिम्मत ना हारें तो ये मुश्किल सिचुएशन से आप इजीली बाहर आ सकते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कुछ इसी तरह के इंसान हैं जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और थोड़ा सा वेट किया, सब्र किया और धीरे धीरे वो अपनी इस मुश्किल से बाहर निकले। उनका किडनी ट्रांसप्लांट 2017 में हुआ था। आज के जो मेहमान हैं उनका नाम है राजेश्वरी, जो कि अहमदाबाद से हैं और 32 साल की हैं। ये वैसे तो एक सोशल वर्कर हैं जो बहुत सारे प्रोजेक्ट में अपना काम करती हैं, लेकिन अगर इनकी पर्सनैलिटी देखी जाए तो ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। अपनी जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं। तो इन्होंने अपनी लाइफ को एक पेशेंट की तरह जीना बंद कर दिया है, अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। तो आइए हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। राजेश्वरी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑर्गन इंडिया की तरफ से हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।
3: थैंक यू सर।
2: राजेश्वरी जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपका जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो नौबत कैसे किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंच गई, ऐसा क्या बीमारी हुई थी आपको कि का कोई इलाज नहीं मिला और अंत में डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट ही करनी पड़ेगी, आपको नई किडनी की जरूरत है, तो इतनी दूर तक बात कैसे पहुंच गई?
3: हाँ जी सर, तो मैं शुरू से शुरुआत करूँ तो जब मैं छोटी थी, बच्चों को अक्सर ये बीमारी होती है बेड वेटिंग, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ये अपने आप को सॉल्व हो जाती है ये प्रॉब्लम। लेकिन अप टू 15 इयर्स मुझे ये बीमारी थी बेड वेटिंग, तो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उस टाइम पे हमें कोई इतना डायग्नोस करने वाला मिला नहीं। ये जब मैं बात कर रही हूँ वो है 95-96, तो उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं था, तो सही टाइम पे मेरा जो डायग्नोसिस है वो नहीं हुआ कि मुझे बेड वेटिंग की बीमारी है, तो उसका हमें एक ऐसे उसको हम डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट ले। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जब तक मैं बड़ी हुई, जैसे मैं 23 इयर्स की थी तभी मेरा ये डिटेक्ट हुआ था PKD, तो अब तक जाके बैड वेटिंग की बीमारी की वजह से धीरे धीरे करके जब मैं 24 साल की हुई तब तक मेरा पूरा किडनी श्रिंक हो चुका था और मैं किडनी फेलियर के 5th स्टेज में पहुंच गई थी। और अचानक एक बार स्टमक इन्फेक्शन होने की वजह से जब मैंने सारे टेस्ट करवाए तो मुझे पता लगा कि मेरा क्रिएटिनिन 7 से अब चला गया है और अभी मेरा किडनी है वो CKD का बीमारी लग चुका है इसमें और श्रिंक हो गया है। तो अभी इसके लिए दो ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। तो मुझे ये सही टाइम पे बेड वेटिंग का जो भी बीमारी था मेरा

0: उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाने से या उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाने की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से ये एक रिजल्ट आया है कि जो मुझे एंड में किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा।
1: जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया कि छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत छोटी और बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई। उन्होंने एक पॉइंट बोला कि अवेयरनेस की कमी। तो हमें अपने जिंदगी में आसपास जो भी हो रहा है या हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमें थोड़ा सा डिटेल में उसके हमेशा जाना चाहिए और एक जो जागरूकता है, एक जनरल अवेयरनेस हर चीज के बारे में रखनी चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं या फिर बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लमों से बच सकते हैं। राजेश्वरी जी, जब आपने अपनी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने पहली बार आपको बोला कि आपको आपका कोई इलाज नहीं है इस प्रॉब्लम का, सीधा किडनी ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी या फिर आपकी जो फैमिली थी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, तब आपकी एज कितनी थी?
0: ये 24 इयर्स की थी और तभी मैं मेरे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी, सोशल वर्क के फर्स्ट सेमेस्टर में मास्टर्स में मेरा पढ़ाई चल रहा था। तो एक्चुअली मतलब बहुत सारे ख्याल आ रहे थे मन में, किडनी ट्रांसप्लांट का तो वो साइड में था। सबसे पहले

0: या फिर आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, होम्योपैथिक में जा सकते हैं, अलग अलग से रिश्तेदारों को पता चलता है, दोस्तों को पता चलता है। तो मतलब ऐसे लोग रिएक्ट करते थे जैसे कुछ बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही कॉल्स आते रहते थे, तो उसमें से मोटिवेशन भी होते थे, कभी कभी डीमोटिवेट भी होते थे। लेकिन मेरा ये था फ्रेंकली स्पीकिंग कि मेरी मम्मी एक बहुत ही स्ट्रांग है, वो मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, वो सेपरेटेड है, तो वो एक एनजीओ में काम कर रही है पिछले 20-22 साल से। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे है, ऑर्फन है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिसको कोई सेंस नहीं है, ना देख सकते ना बोल सकते ना सुन सकते है। जैसे ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है या मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ऐसे ऑप्शन है अवेलेबल जिससे हम रूटीन लाइफ में आ सकते हैं वापस, तो मेरे माइंड में यही ख्याल आया कि हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है, फिर भी वो अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं एक संस्था के सहारे। तो मेरे पास तो मेरी मम्मी है, हमारी संस्था है, मेरे दोस्त है सपोर्ट करने वाले, तो सिर्फ किडनी का ही प्रॉब्लम है और उसके लिए इतने सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो नॉट एन इश्यू, मैं गिव अप नहीं करूंगी। तो मेरा यही एटीट्यूड था पहले से और ये हमेशा के लिए है मेरा। ये
1: बहुत अच्छी बात है ये कि आपने अपनी जो धैर्य है वो रखा और अपना जो एक रीजन ढूंढा आपकी खुद की लाइफ में से कि हाँ जब ये इतना कर सकते हैं तो मैं तो इनसे बहुत ज्यादा मुझे मिला हुआ है, और कभी भगवान को कोसने की वजह आपने वो डिसीजन लिया कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम से लड़ूंगी। तो इसके बाद क्या हुआ राजेश्वरी जी, आपने हॉस्पिटल में ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने ऑप्शन दिए होंगे आपको कि आप लिविंग ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हो, डिसीज के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर, थोड़ा सा अगर डिटेल में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सर पहले तो फ्रेंकली स्पीकिंग जैसे हर पेशेंट गलती करते हैं, ये तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का ऑप्शन सोचा क्योंकि मेरे पापा नहीं थे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था फैमिली में, मम्मी अकेली थी। तो जैसे मम्मी का बी पॉजिटिव है ग्रुप और मेरा ओ था, तो हम लोग लिविंग ट्रांसप्लांट के लिए मम्मी मुझे किडनी दे ऐसे तो चांसेस थे ही नहीं, तो हमने इसके लिए पहले प्रोसेस किया। उसके बाद हमने क्रॉस चेंज में ट्राई किया,
1: स्वैप डोनेशन जैसे बोलते हैं,
0: हाँ स्वैप डोनेशन के लिए भी ट्राई किया, उसमें हमने 2-3 साल वेट किया लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा था। इन बिटवीन ये सारा प्रोसेस चल रहा था, तो इन बिटवीन मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया और जॉब स्टार्ट कर दी क्योंकि किडनी का
1: ड्यूरेशन में आप डायलिसिस करते
0: नहीं सर, मैं ट्रीटमेंट पे ही थी, मैं डायलिसिस पे नहीं गई थी। तो इन बिटवीन मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया, मैं सारे प्रिकॉशंस फॉलो करती थी क्योंकि मेरा माइंड में यही था कि अगर मुझे ट्रांसप्लांट में ऑप्शन नहीं मिल रहा है या कोई डोनर नहीं है मेरे पास, तो मैं जितना हो सकते अपने आप को डायलिसिस स्टेज से बचाऊं और डॉक्टर जो भी परहेज का बोल रहे हैं वो सारा है वो फॉलो करूं और खुद कुछ जॉब करके कुछ पैसे जमा करूं ताकि जब मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़े फ्यूचर में तो मेरे पास कुछ अमाउंट हो जिससे मैं अपना ट्रांसप्लांट करा सकूं। तो मेरे माइंड में यही था, तभी मैं कोई गवर्नमेंट स्कीम या कुछ में रजिस्टर नहीं थी, खुद ही सारे खर्चे हम लोग बैर कर रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट के या फिर मेडिसिन के थे। तो ऐसे करते करते मैंने 2013 से 17 तक का पूरा जो भी सफर है वो मैंने तय किया, और ये 4 साल का सफर, इन बिटवीन हमने सारे ट्राई कर लिए और लास्ट में हमने 15-16 में जाके कैडेवर रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी क्राइटेरियाज है उसमें मेरा हो रहा था एनरोलमेंट, तो मैं एलिजिबल थी। तो फिर मैंने कैडेवर में रजिस्ट्रेशन करवाया क्योंकि मेरा मम्मा है उसका किडनी, वो बीपी का भी पेशेंट है और उसका डायबिटीज भी है मम्मी को, तो वो एलिजिबल नहीं थे और हमारा स्वैप में भी नहीं हो सकता था, इसीलिए फिर मैंने जाके कैडेवर में रजिस्ट्रेशन करवाया। एंड देन मेरा थोड़ा डायलिसिस भी शुरू हो चुका था, तो इन बिटवीन जॉब डायलिसिस और सब चल रहा था।
1: तो कितना करीब कितने साल आपने वेट किया इसके लिए किडनी का?
0: सर 4 साल।
1: 4 साल और फाइनली आपको कैडेवर से फिर किडनी मिली?
0: हाँ जी सर।
1: कैडेवर में जब आपने रजिस्टर किया तो उसके बाद करीब कितना टाइम लगा आपको किडनी मिलने में?
0: सर 1.5 ईयर।
1: 1.5 डेढ़ साल में आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी इन बिटवीन।
0: हाँ सर, जैसे हर पेशेंट करते हैं ना, मैंने

0: से हो जाएगा। तो ये सारे पेशेंट ये करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भ्रम है कि ट्रांसप्लांट एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उससे बहुत डरते हैं लोग। तो क्या है कि सब ऐसा मानते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़े, तो हम कैसे इससे बच जाए, तो ये सबका थिंकिंग रहता है। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर यही थिंकिंग है लोगों की। तो हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही होते हैं जो हमको कन्विंस कर लेते हैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब चल रहा था साथ में।
1: तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे राजेश्वरी जी, और ब्रेक के बाद हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ और नए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी जिंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपने खास कार्यक्रम में। हम बात कर रहे थे राजेश्वरी जी से, जो कि एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थी और आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट अब वो पेशेंट नहीं है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी रूटीन लाइफ में बिल्कुल वापस आ चुकी हैं। अब वो काम करती हैं, अपने घर संभालती हैं और किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें नहीं है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं राजेश्वरी जी के, जब आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो आपने बताया करीब 1.5 साल आपने वेट किया। आपने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के में कोई रजिस्टर नहीं थी, आप सारा खर्च खुद बियर कर रही थी, तो उसके बाद क्या आपने गवर्नमेंट की हेल्प ली या कौन सी स्कीम, कोई सी स्कीम के अंदर आपका ट्रांसप्लांट हुआ?
2: हाँ सर, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे मम्मा जो NGO से कनेक्टेड थे, वहाँ से कुछ डोनेशन की हेल्प से मुझे मिला था, एक्सपेंस जो मेडिकल एक्सपेंस के तौर पे मिला था, उसकी हेल्प से भी मुझे बहुत सारा मतलब हेल्प हुआ है, जिससे मैं मेरा एक्सपेंस मिनिमाइज कर सकूँ मेडिकल। और बाद में बहुत ट्राई करने के बाद 3-4 साल के बाद, और जैसे हमने मेरी मम्मा का जो भी रियल इनकम सर्टिफिकेट था वो जाके गवर्नमेंट में सबमिट किया हमारे लोकल लेवल पे, और वहाँ से मेरे को जो भी डिस्ट्रिक्ट की लोकल लेवल के जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहती है उसके अंडर में मेरा बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर मेरा फॉल करता था, तो उसी में मेरा फिर क्राइटेरिया में रजिस्टर हुआ और तब जाके मेरा फिर सारा ट्रीटमेंट फ्री में हुआ ट्रांसप्लांट का।
1: जितनी ये गुजरात सरकार की कोई स्कीम है?
2: गुजरात सरकार की स्कीम्स है मुख्यमंत्री अमृतम योजना, माँ अमृतम योजना, ये बहुत सारी स्कीम्स है गुजरात गवर्नमेंट की, जिसमें माँ कार्ड होता है, अमृतम कार्ड होता है, उसके अंदर में ट्रांसप्लांट वगैरह सर्जरी रहता है, उसके उसमें बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मेरा बिलो पॉवर्टी लाइन के जो स्पेशल ग्रुप में जो सिंगल पेरेंट बच्चों को मिल रहा है उसमें मुझे मिला था।
1: तो इसमें आपका कुछ पार्शली फंडिंग हुई गवर्नमेंट की तरफ से या पूरा जो फंडिंग थी 100% फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हुई?
2: सर ट्रांसप्लांट जब हुआ तब से मेरा फुल्ली गवर्नमेंट फंडिंग में से ही हो रहा है सारा ट्रीटमेंट
1: जी। और इसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि जो ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हम लेते हैं, तो वो भी आपको गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू ही मिलती है, जो हर महीने की दवाइयाँ हैं
2: जो भी रहता है वो मुझे सारा एक्सपेंस मेडिकल हो या फिर सर्जरी रिलेटेड हो या ट्रीटमेंट कुछ भी मेडिसिन का, तो सब कुछ गवर्नमेंट की ओर से हॉस्पिटल से ही मिल जाता है
1: जी। ओके, तो राजेश्वरी जी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे आप जिस स्टेज में थी तो वो भी होंगे इस स्टेज में कभी ना कभी, तो आप इन सभी को अगर कुछ सलाह देना चाहती हूँ अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि हाँ इस चीज पर जाए इस चीज पर ना जाए।
2: मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सर मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, बोलना नहीं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको किडनी की बीमारी हो रही है तो फर्स्ट

0: चुकी हूँ आपको, जो भी डिजीज है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं रोना है, नहीं टूट पड़ना है, या नहीं भगवान को कोसना है, ना अपनी किस्मत को कोसना है। जो भी जैसा भी है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि क्या है, तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो बाकी का काम डॉक्टर का है, वो अपने आप कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है पेशेंट को समझाते मेंटली उसको कि ये तुम्हें डिजीज हुआ है, अब इसका ये ट्रीटमेंट है और तुम्हें ये करवाना चाहिए। फिर उसका पूरा टाइम काउंसलिंग में चला जाता है, पेशेंट, उसके फैमिली, उसके रिलेटिव, ये वो। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स के एफर्ट्स मर जाते हैं। तो मेरा ये बिलीव करती हूँ मैं कि अगर हम डिजीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और डॉक्टर जो भी एडवाइस दे रहे हैं, प्रिकॉशंस बोल रहे हैं, डाइट बोल रहे हैं, उसको पूरा हमें फॉलो करना है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना है, अपनी सेहत का पूरे पूरा ख्याल रखना है। और मेरा ये सिंपल एडवाइस है कि जो हमारे डॉक्टर है उसके एक ही डॉक्टर का हम इलाज लेके चले, अलग अलग डॉक्टर के पास नहीं गए सजेशन के लिए, एक ही डॉक्टर का इलाज करें और जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ कंटिन्यू करें, उसी से हम जुड़े रहे, नहीं आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या कुछ में भी। और मैं अपने आप के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर, अगर हम ये इतनी चीजें नहीं करते हैं तो हमें स्वस्थ होने में ज्यादा समय नहीं लगता। डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं और जल्दी से हम रिकवर हो जाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
1: यहाँ पर हम राजेश्वर जी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
0: हाँ जी सर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजेश्वरी जी से हमारे खास कार्यक्रम में। ब्रेक में जाने से पहले हम राजेश्वरी जी से जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब उनके ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी तो किस तरह की परेशानी उन्होंने फेस की और उससे जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। राजेश्वर जी, हमें ये भी बताइए कि जब ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या अंतर है आपको देखने को मिला है?
2: एक्चुअली मैं पूरा जस्टिफाई करूँ तो मुझे कोई डिफरेंस इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है। रीजन यही है कि जब मेरा सीकेटी डिटेक्ट हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किडनी मिलेगा या नहीं, या फिर मेरा ट्रांसप्लांट भी होगा या नहीं। मुझे डायलिसिस पे शायद लाइफ टाइम रहना पड़े, तो मैंने एक विश लिस्ट बनाया था। मुझे ये जॉब करना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसे फोटोज लेने हैं, ये खाना है, ये करना है, एक पूरा ऐसे तैयार किया था चार्ट पेपर, मैं वही फॉलो कर रही थी। इन बिटवीन मेरा साइड में ये सारा प्रोसेस तो चल ही रहा था, लेकिन मेरा माइंड उसी में था कि मुझे ये करना है। तो जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट में रजिस्ट्रेशन हो गया कैडेवर के लिए, तो मैंने और एक नया लिस्ट बना लिया कि पोस्ट ट्रांसप्लांट मुझे क्या क्या करना है। हाँ, जो बाकी रह गया था वो तो मैं अभी भी उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी पूरा एंजॉय किया है अपना जो भी स्टेज था सीकेडी का, मैंने कॉलेज भी गई हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि बाहर का खाना तो हमें अलाउड नहीं होता है, लिमिटेड पानी पीना होता है। मेरे कुछ मेरे फ्रेंड्स, उसमें से एक मेरा भाई था कॉलेज में, तो मुझे स्पेशली याद है, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मुझे बाहर का नहीं खाना था तो उसने भी मतलब ऐसे तब से उसने व्रत लिया था कि जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो जाए तब तक वो भी बाहर का कुछ नहीं खाएगा। तो फ्रेंड्स भी इतने मोटिवेटिंग थे मेरे लिए, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए सेकेंड फैमिली रहे हमेशा से। तो मेरे पास रियल फैमिली शायद नहीं है जिसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन वाली, लेकिन मेरे फ्रेंड्स से वो एज अ सेकंड फैमिली मेरे साथ हमेशा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। तो मैं कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक पेशेंट वाला लाइफ अभी मेरा है और मैं ये कर रही हूँ या मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला है। मैंने उस स्टेज को भी बहुत एंजॉय किया। इन बिटवीन मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तब भी मेरे फ्रेंड्स ही थे मेरे साथ हॉस्पिटल में, क्योंकि मम्मी से अकेले से सब कुछ मैनेज नहीं होता था, तो वो टर्न बाय टर्न आते थे एक एक दो दो दिन मेरे साथ। तो यहाँ पे भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला और अभी भी मेरे साथ ही ये सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा जर्नी चल रहा है अभी भी। कुछ ना कुछ छोटा मोटा लाइफ में होता ही रहता है, सबकी लाइफ में होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जो मिला है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। हमारे पास आज का दिन हमने देखा है तो ये हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें रोज नया दिन देखने को मिलता है, हम जिंदा है और अपने परिवार के साथ है, इससे लाइफ में ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरी मम्मी के साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और हम बड़े प्यार से हमारी फैमिली में अभी रह रहे हैं, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सारी चीज अपने आप मैनेज हो जाती है। तो सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी तो आते ही है, लेकिन जब भी कुछ भी हम डीमोटिवेट हो जाए या कुछ भी हो, तो मैंने मेरे डोनर की फोटो भी मेरे रूम में लगा रखी है। तो कभी भी मुझे ऐसे डीमोटिवेशन जैसा कुछ भी फील होता है मैं उसे देख लेती हूँ। फिर यही है मेरा एक लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन का पार्ट कि मुझे नया लाइफ मिला है तो फिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं यही बोलती हूँ सारे फ्रेंड्स को, मैं मैसेज भी देना चाहूंगी ये कि अगर तुम्हारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, अगर तुम्हें किडनी रिप्लेसमेंट मिल सकता है, नया लाइफ मिल सकता है, तो लाइफ में कुछ भी मिल सकता है, सिर्फ आपको उसके लिए एफर्ट्स करने जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता या फिर आप खुश नहीं रहे, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उस चीज को देखते हो।
3: मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जिस डोनर की किडनी आपको मिली, तो आप उस डोनर फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली मैं जब हॉस्पिटल में थी, उन्होंने सामने से इंक्वायरी किया था कि किसे मिली है, और जब उन्हें पता चला कि एक लड़की को मिली है, तो वेरी हैप्पी कि हमारा जो भी डोनेट किया हुआ है ऑर्गन एक लड़की को मिला है, वो भी यंग लड़की को मिला है, और जो खुद ऐसी इतनी है, मोटिवेटेड रहती है या फिर सबको हेल्प करने वाली है ऐसी है। तो मेरा पास हुआ था तभी मैं हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाद फिर मैंने उनको थैंक यू भी बोला और मेरे डोनर है उनकी फोटोग्राफ भी मंगवाई और मैंने मेरे घर में जैसे आपको ऑलरेडी बताया मैंने वो रखी भी है। तो मैंने उनको फिर जब भी मेरा किडनी ट्रांसप्लांट तो मेरे 4 साल 4.5 साल हो चुके हैं, तो जब भी मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का दिन आता है तो हम कुछ ना कुछ मम्मी जिस एनजीओ में काम करती है वहाँ पे बच्चों को ट्रीट देते हैं, फिर हमारे डोनर है उसको हम कॉल करते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारा सिलसिला है, एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग है हमारी। हम मिले नहीं है कभी लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। कोई स्पेशल डे होता है तो बात करते हैं, एक दूसरे से विश करते हैं, एक बॉन्डिंग और कनेक्शन हमने बना के रखी है डोनर की फैमिली के साथ।
4: जी बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है कि अगर आपको पता है तो आप उनके लिए अवेलेबल रहते हैं हमेशा एंड उस चीज का मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। नर्सी जी, अगर हमारे श्रोताओं को आप कोई संदेश देना चाहें आपके दान पर तो आप उनको दे सकती हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अवेयर नहीं है ऑर्गन डोनेशन को लेकर या कुछ भ्रांतियां जो उन्होंने पाल रखी हैं अपने मन में जिसके कारण वो ऑर्गन डोनेट करने से बचते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें।
2: डेफिनेटली सर, जो भी हमारी जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए यही मैसेज करना चाहूंगी कि अगर आप किसी को कुछ ऑर्गन डोनेट करते हो तो कोई एक ऐसा है जो दुनिया छोड़ के जा रहा है और कोई एक ऐसा है जिसको अभी जीना है, तो अगर आप उसको डोनेट करोगे तो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। आपकी फैमिली में से कोई जा रहा है तो किसी और की फैमिली में आप ऑर्गन दे रहे हो तो वो इंसान अपनी फैमिली के साथ बने रहता है। तो आपने जो खो चुका है या फिर जो भी ब्रेन डेथ पेशेंट्स डिक्लेयर किए जाते हैं उसके ऑर्गन आप डोनेट करते हो तो एक नहीं आप 8 जिंदगियां बचा सकते हो। किडनी, हार्ट, लीवर, आप सब कुछ डोनेट कर सकते हो। तो ये डोनेशन के सहारे आप किसी और की लाइफ में नई लाइफ ऐड कर सकते हो, नए दिन ला सकते हो, उनके सपने पूरे कर सकते हो। तो अगर आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हो तो आप ऑर्गन नहीं एक पूरा लाइफ डोनेट कर रहे हो। और रही बात जो भी हमारे समाज में अवेयरनेस की बात है तो बहुत सारी एनजीओज है जो ऑर्गन डोनेशन पे ऑलरेडी काम कर रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि जनरल पॉपुलेशन को कि आप ऑर्गन डोनेट करिए, उसके रिलेटेड कोई भी मिथ है उसमें मत पढ़िए, डॉक्टर के पास जाइए, पूरा सलाह लीजिए और फिर उसके बाद आप ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट कीजिए। अगर आप ऑर्गन डोनेट करेंगे तो आप एक नई लाइफ डोनेट करेंगे।
4: जी बिल्कुल, राची जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी से अवगत कराया। हम कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह से लोगों को भी मोटिवेट करें और अपने आप को भी मोटिवेट करते रहें जिंदगी जीने के लिए। दोस्तों, जैसा कि राशि जी ने बताया कि जब आपका परिवार में कोई ऐसा जाता है तो आप उसके ऑर्गन डोनेट करके बहुत सारे लोगों को जिंदगी दे सकते हैं और वो लोग जिंदा रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपका जो जाता है अगर आप ऑर्गन डोनेट किए बिना उनको जाने देते हैं तो वो एक तरह से चला जाता है, लेकिन जब आप ऑर्गन डोनेट करते हो तो एक तरह से वो आपके साथ हमेशा के लिए बन जाता है इस दुनिया में। और इससे बड़ी श्रद्धांजलि आई थिंक उन लोगों को नहीं हो सकती, आपके जो परिवारजन हैं, प्रियजन हैं अगर वो जा रहे हैं तो अगर आप अंगदान के बारे में और जानना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप www.organindia.org पर आकर विजिट कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल info@organindia.org ये हमारा ईमेल आईडी है और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1800120 3648 है, ये टोल फ्री नंबर है तो आपका कोई पैसा भी इसमें नहीं लगेगा। चलिए हम आज के शो में विदा लेते हैं और जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर, एक नई प्रेरणा की कहानी को लेकर। धन्यवाद।
5: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों ली आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पड़ी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
13: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाए पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
14: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
15: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
17: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
18: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
17: हाँ बोलो।
18: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
17: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
18: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेके माटी दी महक। श्रोताओं कर देने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने, तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक आशोतों बढ़ देने कार्यक्रम जग गए तने सुन देने कोर प्यारा दिया।

गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारेयां ट्यून कीते आए अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक, तां श्रोताओं सुनदे ने इक और प्यारा जिहा गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दिन कार्यक्रम च आगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तो हां सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहां श्रोतो अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हां सारे ने बड़ी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरे

0: काम करना पड़ेगा।
1: हाँ बोलो।
0: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
1: अभी बताती हूँ दीदी। टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
2: पैसे का पेड़ नहीं दिखा।
3: गजब बेइज्जती है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते,
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुचुगो तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वीडियो गुंजन धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने आ रहा सभी हेरने आ रहा कचो किया है तुसो दस देखिया है अपने गुंजन रेडियो रे फेसबुक रे माध्यम थो भी किया सो आजकल लाइव किया सो इच्छुक कर दे तो चलो पहले दही बल दे दी कि होने आ रहा स्वागत अभिनंदन आप है हेरने रा भी है स्वागत और अभिनंदन कर देना। और सचिन कपूर है जी बहुत बहुत स्वागत मोटा मोटा स्वागत तुम्हारा सब भी रहा कैसे हैं तो सब उम्मीद करना तो सब खरे बुने खुश बुने तंदुरुस्त बुने मानसिक शांति हो के कि आ सो रहे हो कर दे बुने क्योंकि जिंदगी में श्रोता हूँ मानसिक शांति की आसो बड़े ज़रूरी है ना। और रिश्ते भी कैन सो बड़े ज़रूरी इन लाइफ अंदर ता तो सब श्रोता जरूर आंसू की जुड़ी सकते हैं बने सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते सो कॉल जरूर कर सकते हैं 7018817091 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करना जी 7018817091।

जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी है बल्देन है ना, तो इस समय तू पता जाने गर्मी बंदे था ह्यूमिडिटी की ऐसो भी थोड़ी करी घाट के ऐसो माफ़ करा ज़्यादा हाँ घाट के ऐसो बचे गंदे हा तो ऐसा बन रहे ने समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो हुणु कर देन अपने अपने रेडियो सेट में वीडियो गुंजन थारम शाला मंच ता थोड़ी करी और हगु है जरूर बढ़ दिन छो तो लेकिन हाँ ना मेरी गल कर कुछ दे दिया है यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी है तो इस समय 52% की ऐसो ह्यूमिडिटी है हवा माना में या मतलब ता कार्यक्रम का आगाज़ ज़रूर कर लें देन बल्दन आगाज़ किया सो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ना। और बहुत सारे श्रोता असुगी रूबरू बुंदन इस कार्यक्रम रे माध्यम तो आ जाए है तुसु होगी भी किया सो तिया श्रोता जो रूबरू करवा ले सो तो आइए जी कार्यक्रम का आगाज़ कर देन इस गीत होगी और फिर तथों बाद तुसु होगी रूबरू करवा हैं तो सब बन रहे ने समय रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हुणु कर देने अपने अपने रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच।

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है, सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में असोगी चल रहा इंदे पहले श्रोता असोगी कनेक्टेड हैं श्रोतों कार्यक्रम तो सब हूँ कर देन इंदी अपनी गप्पा हाई था कार्यक्रम मंच श्रोतागण जो कर देन कनेक्ट पहले और तथो बाद फिर अगली गलबात उसोगी कर देन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक ने जी? राज
1: ठीक ठाक ने सर जी?
0: हाँ जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बल्ला ठीक ठाक?
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी।
0: अच्छा तो हम तो बछाणी को तुस ऊपर जो मन हुणो कर देन तुस तिन्यो दस दे के तो एक गुण बल्लन देन और कड़ी थों बल्लन देन।
1: सुनील कुमार बोला है कोठी ने जलोड़ते सर जी।
0: जी तो कौन दिन गीत थोड़ना तुसु?
1: गाना सुनना मैं हेर मेरे कुड़मणो मां तेरी कुड़मणी नचदी आई।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी।
0: चलिए आजकल ब्याह कार्ज भी लग गया ना।
1: हाँ जी सर जी।
0: ठीक है जी जरूर सुन ले तू सुबह की तरह।
1: हाँ जी धन्यवाद सर जी। नमस्कार।
0: धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोता हूँ तो सब बन रहे ने इस समय आज सचिन कपूर सो गया और कार्यक्रम हूँ कर देने दी अपनी गप्पा है ना जी। कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगू बढ़ाई लेंदेन बढ़ाना तो पैना ही है भाई, क्या करना है ना। तो इन अगले श्रोता असूगे कनेक्टेड इन तो श्रोतों आइया एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम आज जे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हूँ कर देने अपने अपने रेडियो सेट में और श्रोता सो के तो ही नहीं ना है रेडियो सेट सो के तो जुड़ रहे ना है लेकिन फेसबुक रे माध्यम तो भी जुड़ रहे ना है। तो आइए जी इन द्रोतागण इन द्रोतागण असोगी कनेक्टेड थी है लेकिन डिसकनेक्ट करना पैन असु जो कसकी कारण वर्ष की असो कॉल डिसकनेक्ट हुए शोतम ता बहुत सारे श्रोतागण सो असोगे फेसबुक रे माध्यम तो भी जुड़ दे हिन है ना और बहुत सारे श्रोतागण जो इन दे पुराने श्रोता हिन जो रेडियो रे माध्यम तो भी असोगे किया सो जुड़ दे हिन। बहरहाल इन द अगले श्रोता असोगे कनेक्टेड हिन पुस्तन कौन बल्लूं देन और कड़ी तो बल्लूं देन। नमस्ते जी। हेलो। नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार। कौन बल्लूं देन और कड़ी तो बल्लूं देन जनाब?
2: आ जूड़ी बल्लूं देन।
0: अच्छा जूड़ी तो कौन बल्लूं देन जी?
2: मंगत राम।
0: हाँ जी
2: मंगत राम बल्लूं दे जूड़ी तो।
0: मंगत राम जी क्या हाल चाल है मंगत मंगत राम जी तो दे
2: ठीक है जी
0: और कर करे लुगरेन
2: बस लुगरे दैड़े कटना दैड़ू दूड़ भाई करे
0: अच्छा तू एक बल्लू की लुगरे दैड़े कटना मतलब तू अपनी जिंदगी खूबसूरत ना लगन दे
2: हां जी
0: ना लगन दे
2: हां जी
0: मिले तू अपनी जिंदगी की है सो खूबसूरत ना लगन दे
2: ना ना बढ़िया टन टन कर दे चलो रे
0: आहा क्या बात है ऐसे ए ता बाकी सुख दुख ता जिंदगी रे हिस्सा ना जी इन्या ता चलते रहना सो
2: हां सुख दुख ता जिंदगी रे मुकणे ना की डाड़ा मुकणे
0: ए आ बिल्कुल ऐसा ही गल आकी डाड़ा मुकणे सीधा कह ले
2: हां दस
0: और राजीव बाजी घर परिवार ठीक है जी सब ता वेड़ी गुंजन धर्मशाला में आज क्या फरमाइश लगे तो है दीना क्या होना चाहते कस माता रा भजन जी ना कस माता रा भजन कैली फेरी दसा
2: हाँ जी
0: कैली फेरी दसा जी कस माता रा भजन हम पूछूंदा
2: टावा माता
0: टावा माता
2: हाँ
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले
2: अच्छा ठीक है जी।
0: चलिए श्रोता और भी जानकारी जो असु तुस होगी शेयर करनी साझा करनी तो सब श्रोता जरूर जुड़ी सकते हैं ना सोगी 708-8-8-709 पर कॉल करे करे नंबर आक मौके फेरे 708-8-8 709 पर। तो जी क्या सब जानना इन श्रोताओं की आजकल वीकेंड पर के असो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जाए सो तो है भीड़ बिलिंग रे गल करी लिया श्रोताओं, जाए सो तो है धर्मशाला रे गल किया सो करी लिया, मैकलोडगंज रे गल किया सो करी लिया श्रोताओं, धोलाधार री वादी में किया सो इं वादी रे बीच में किया सो रौनक बढ़ती जरूर है, लेकिन करखन करखा ट्रैफिक रहा भी एक असो मतलब सो फेस के असो झलना पैंता है, और दुई गल ट्रैकिंग चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है श्रोताओं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ के असो पर्यटक इस समय इंदी है श्रोताओं, है ना, जाए सो भीड़ बिलिंग रही गल करें या मैकलोडगंज धर्मकोट बागसुनाग इन जगह या अन्य कस की हो भी जगह भी किया सो तो है गल कर लिया श्रोताओं, का काफ़ी अच्छे किया सो वास्त है गल है, और खास कर श्रोताओं आज 22 तारीख का की जो जिनकी यह सब जान दिन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किया सो वीकेंड पर चलिया तो ता यह सब किया सो तसी इंजॉय भी करो और बहुत कुछ सीखो भी आए है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और वीकेंड री छुट्टी वे चलते किया सो धर्मशाला मैकलोडगंज और त्रिवेण में पर्यटक भीड़ किया सो काफ़ी ज़्यादा हेरने जो किया सो मोड़ो शो तो है ना, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान सहित दक्षिण भारत रे विभिन्न राज्य थो किया सो बड़ी संख्या में पर्यटक आए शो तो और धर्मशाला पूज्य शो तो है ना, अब तथी अगर गल करना है शो तो विदेशी सैलानी भी किया सो अच्छी खासी भीड़ किया सो विदेशी जो सैलानी थी इन दे तैयारी भी हेरने जो किया सो मुड़े शो तो दस नचंदा मैकलोडगंज भागसुनाग और त्रिवेण रहे प्रमुख पर्यटन स्थल दिन भर किया सो गुलजार रहे शो तो है ना, और मैकलोडगंज बाजार भागसुनाग क्षेत्र तथा त्रिवेण ट्रैक मार्ग पर गया मार्ग पर किया सो पर्यटकारी काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक भीड़ किया सो हेरने जो मुड़े और इन स्थान पर किया सो पैदल चलने तक रहे वास्ते किया सो जगह घाट पे जो कि जो कारोबारी बागसू मैकलोडगंज धर्मकोट नड्डी रहे तीन वास्ते बड़ी खुशखबरी है और बड़ी अच्छी गल है ना, तो वीकेंड पर मैकलोडगंज में किया सो काफ़ी ज़्यादा भीड़ बोती है, भीड़ बिलिंग में भी किया सो काफ़ी ज़्यादा भीड़ इन्हें जो मुड़ी वीकेंड पर श्रोतों कार्यक्रम ये चलते रहना श्रोतों जानकारी तुस हो गई आंसू साझा करते रहना है, तो सब बंडो ने इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया, और आऊँ नाचीज सचिन कपूर तुसु सो गया तैये चल दिन और फरमाइश दौर के श्रोताओं सो पूरा कर दिन, तो सब ये बने रहे जुड़े रहे इवन की कॉल भी कर सकते हैं, तो है 708-8-709 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ 708-8-709 पर तो है कॉल कर सकते हैं, चलिए चल दें श्रोताओं और फरमाइश माहौन देने गीत

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब बीएटी उनको रॉड एक कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही श्रोताओं ता तुम तो सभी राख मौके फिर ही बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है जी। तो सब श्रोता सो गीत जुड़ी सकदन बनी सकदन अपना पसंदीदा गीत के ऐसो होनी सकते हैं इति वास्ते तुसू कॉल करना पैनी है। और चलिए जी इन श्रोतागण के श्रोताओं से लगातार हंसोगे जुड़ाव करते हैं और इस कार्यक्रम सोगे खासकर जुड़े रहते लगातार लगातार लगातार के सो जुड़ाव करते हैं जुड़ी चुक रहे हैं और तुस होगी कि यह सो अह कनेक्ट भी करवाई दिन बहरहाल श्रोता हूँ तू सब यह हूँ दसना चाहता जरूर तू सब बन रहे इस समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला सो गया और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देन अपने आर जे वीडियो चो की सचिन कपूर सो गए चलिए लेकर चल दें तू सीधा अपने श्रोता सो गए कनेक्ट करवा दिन पूछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी तो बल्लू दिन नमस्कार जी वेड़ी गुंजन धर्मशाला मां स्वागत है तुंदा।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते।
1: ठीक ठाक बढ़िया
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो है भला तो है ठीक ठाक ना।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा जी जनाब कौन बलुंदन और कड़ी थों बलु कर देन।
1: हाँ जी
0: जनाब कौन बलुंदन और कड़ी थों बलुंदन।
1: चार थोड़े बोल रहा मंगल।
0: अच्छा चार थोड़े थों मंगल।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: क्या बात है तब मंगल जी कौन दिन गीत होना चाहते हैं तो है क्या फरमाइश है तुम्हें।
1: मेरी माता दी ये तस्वीर है प्यार में तेरे नाल पाया।
0: मेरी माता दी तस्वीर है प्यार में तेरे नाल पाया।
1: हाँ जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी।
0: मंगल जी क्या चैतड़ू थो तो ये बल्लू कर देना है फेसबुक रे माध्यम थो भी लाइव ने इस समय रेडियो मंच तो है नहीं लेकिन चैतड़ू में तो है दसा कि चैतड़ू में सभी अच्छा ढाबा कड़ी है जी असको खाने जो मोड़ी सकता है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी दिखते ही नाक मौके फिर दसा।
1: हाँ जी
0: क्या ना दसो आक मौके फिर दसा जी
1: कोला ना
0: डाबे डाबे रा ना
1: संजय ढाबा एक संजय ढाबा।
0: अच्छा चलिए आक मौके अपनी अच्छा ठीक है जी चलिए आप मौके अपनी फरमाइश फिर दोहराई दे क्या फरमाइश देती थी तो है जी।
1: मेरी माता दी तस्वीर है मैं प्यार नाल तेरे नाल पाया माता दी भेंट है।
0: ठीक है जी जरूर तुस वो ये भेंट होने ले है धन्यवाद। तो शो तो सब भी कनेक्ट हो सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिर यह है तू हो गए शेयर कर दें साझा कर देना 708-8-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो तो है ज़रूर वो गे साझा कर सकते हैं और कुछ अपने क्षेत्र जानकारी तो सो लगता कि जो रेडियो मन दस ने लाइक सो जानकारी भी तो साझा कर सकते हैं पर हाल चल दिन हगू और फरमाइशा दौर पूरा कर दें श्रोता हूँ तो सब बन रहे इस समय सचिन कपूर सो गए चलिए थोड़ा करिए और हगू चल दिन और होने दिन तू सभी जो बिल्कुल प्यारे दे गीतारी किनारी दस हो गाने गाने श्रोता हूँ अनंदन है गीत श्रोताओं बने रहा आसूस होगी तसूस होगी कचो की कार्यक्रम किया सो बिल्कुल लाइव चल रहा है इस समय 708-8-8-709 पर तो है कॉल जरूर कर सकते हैं।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ तो सोगी तुंद अपना आर जे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हा इन द अगले श्रोता असोगे कनेक्टेड हिन जरूर पुस्ता इन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दिन तो सब बन रहे समय सुसोगी बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट्स होगी जुड़ रहे बुने और हूँ करते हैं इस समय कार्यक्रम इंदा इंदा और भी श्रोता के सुकनेक्ट हो करते हैं। नमस्ते जी। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन जनाब
1: गुंजन परिवार को मेरा नमस्कार प्रणाम।
0: हाँ जी ठीक ठाक राजीव बाजी
1: अनिल बोला ना
0: जी। हाँ जी हाँ जी अनिल जी राजीव बाजी ने ठीक ठाक ना
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ जी।
0: अच्छा अनिल जी क्या है धर्मशाला री नई ताजी खबर तुंदी पास से रे खेल पवीसर रियो खेल पवीसर जड़ी इन दस इलाके थो तो है बल्लू कर देन है ना जी।
1: जी जी जी जी
0: क्या बात जी, है
1: बड़ी सी बात बड़ी सी बात बड़ा सब बुला में।
0: हाँ जी
1: उसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
0: खेल
1: तो आपने बोला कि टूरिस्ट के बारे में आप सोच रहे पहले बात कर रहे टूरिस्ट क्या क्या क्या
0: आता है
1: क्या क्या होता है इसके बारे में कुछ थोड़ा रूबरू कराता हूँ। देखो सचिन जी जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है
0: हाँ जी
1: तो सबसे पहले मतलब फोटो लेता है कैमरे से।
0: अच्छा
1: फिर उन फोटो को अपने देश में सेंड करता है
0: जी।
1: ठीक है तो मैं ये मुझे ये हैरानी होती है फोटो तो लेता है और फोटो सेंड क्या करता हुआ कंट्री को अपने कंट्री को जहाँ रहता हुआ फोटो सेंड करता है वो फोटो कैसे लेता क्योंकि आज अब सूर्य में एक चेलिया हमारे चेलिया गांव है जवाहर नगर में
0: चेलिया ग्राम के तड़ियो गंदा है ना जी।
1: तो चेलिया गांव में एक मंदिर है ठीक है
0: बिल्कुल
1: दो मंदिर है दो शिव मंदिर है के नीचे एक कॉलोनी में के ऊपर है
0: एक था जो
1: ऊपर का आलम भी है नीचे का आलम भी यही है तो दोनों में जो कचरे का हालत है खराब है क्योंकि सुबह मैंने देखा एक टूरिस्ट आई रशिया से मेरी उससे इंट्रोडक्शन हुई होगी भेंट हुई काफी देर बात हुई तो मैं उसको पूछा मैं बोला कि बिच कंट्री टू बोला बोला बिल्कुल तो उससे मेरी रूबरू बात हुई है तो उसने बड़ी देर पहले वीडियो बनाते तैयार करके काफी देर हमारे नीचे टाड़े में पर एक साइडीन बहुत बड़ा प्यारा व्यू दिखता है पूरा पासू गांव दिखता है पूरा सीला दिखता है तो उसने व्यू बनाया तो मैं तो ये हैरान हूँ कि मतलब व्यू थे नेचर का व्यू नेचर हमें दिया है पर हमने नेचर को क्या दिया
0: दुखी
1: बात है। फिर उसने वो कचरे का वीडियो बनाया जो कचरा कॉलोनी वाला फेंका हुआ है उस कचरे का वीडियो भी बनाया उसको भी सेंड किया तो मुझे तो ये बहुत दुख मतलब एक आश्चर्य जैसा होता है कि नेचर तो हमें बहुत प्रोसली है पर हम इस लायक नहीं है खासकर हम हिंदुस्तानी जबकि मैंने उसकी सेंस देखी वो उस मंदिर में गई उसे देखो जबकि सनातनी ना होते हुए उसने अपने जूते बाहर खोल दिए और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग जूते समेत चले जाते हैं और देखिए इसके अलावा कि मंदिर में बैठ के लोग शराब पीते हैं सुबह मैंने कई बार उस जो मंदिर में रैपर उठाए हैं है ना दारू के गिलास गिलास भी उठाए हैं तो मुझे ये हैरानी होती है कि हम किस हो की किस विकास की बात हम करते हैं है ना। मैं एक बात बोलूंगा मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा आपको कभी गुरुद्वारे में लोग दारू पीते हुए नहीं मिलेंगे पहली बात मस्जिद में चलो मैं मस्जिदों में भी गया हूँ मस्जिद में कोई भी लोग दारू पीते नहीं मिलता हमारे ही मंदिरों में दारू पीते हुए लोग क्यों मिलते हैं सबसे बड़े दुख की बात है दारू पीते हैं और छोड़ो चिकन मटन खाते मैंने तो वहां पर हड्डियां पड़ी हुई दिखी बोतलें बियर की पड़ी हुई दिखी वो भी मैंने खुद उठाई है बियर की बोतलें दारू की बोतलें मैंने सुबह जाकर सफाई करते ना तो हमने खुद उठाते हैं बोतलों को तो गिलास उठाते हैं तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो हम हमारे मंदिरों में ये हालत है तो मैं ये तो गुरुद्वारे में ये नहीं चर्च में ये बिल्कुल नहीं होता वहाँ कोई लोग दारू नहीं पीता नोबडी हमारे ही क्यों पीते हैं
0: बड़ा अच्छा
1: ही मंदिरों में क्या मंदिर एक मतलब वो जो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं
0: बड़ा अच्छा विषय है और बड़े अच्छे तर्क पर तो है गल भी करी अनिल जी। और
1: जी
0: वाकई में बड़ा सोच विचार और बड़ा गहन विषय करने पर है ना कि
1: बहुत
0: ऐसे
1: ज्यादा बहुत
0: चलिए
1: ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं, बहुत ही ज्यादा।
0: बहुत
1: क्योंकि
0: ज्यादा।
1: मंदिर मैंने देखा कि गुरुद्वारे में, किसी गुरुद्वारे में ऐसा नहीं मिलेगा, मस्जिद में ऐसा नहीं मिलेगा, कोई दारू पीता हुआ नहीं मिलेगा। हमारे मंदिरों में कहीं भी लोग भंग पीते हुए मिल रहे हैं, सीटों पे बट मिल रहे हैं, इनके टुकड़े मिल रहे हैं सूर उठ के, है ना। तो हम लोग बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं, काहे के सनातनी है हम लोग।
0: बहुत अच्छा और बहुत
1: फिर
0: तगड़ा
1: हम बड़े
0: विषय।
1: लोगों में बातें करते हैं, अरे सफाई लोग रखे राजी नहीं को गया, पर हम वो बेचारी मैं खुद उस व्यू जो पेड़ पेड़ों का व्यू था, उसके फोटो, बैम्बू के पेड़ थे उनके फोटो ले रही थी। तो मैंने कहा नेचर बैम्बू लगाए पेड़ लगाए वो तो नेचर दी हमें, पर हम नेचर को क्या देते हैं, हम नेचर को कुछ नहीं देते।
0: बस
1: सचिन जी मुझे तो वो वक्त याद है, हमारे घर के पास चिरान खड्ड है,
0: जी
1: नाम सुनो चिरान खड्ड, सुना
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जो खड्ड
0: चरण
1: पड़ती
0: खड़
1: है। तो उस
0: बिल्कुल
1: खड्ड में हम कोई एक वक्त खड्ड में नहाते थे बचपन
0: जी
1: में, है ना, मतलब स्विमिंग करते थे। तो उस खड्ड में इवन इतना पानी साफ होता था कि हम पानी भी पीते थे,
0: पीते
1: समटाइम
0: थे।
1: हम पानी भी पीते थे, जब ज्यादा प्यास लगे पानी भी पीते थे, बिल्कुल साफ पानी होता था। आज देखो उस पानी में लोग हाथ नहीं डाल सकते, अब हाथ डालने में डर लगता कि यार कहीं हमारी स्किन को रिएक्शन हो जाए, है ना। उसमें रैग्स पड़े हुए, चीथड़े पड़े हुए, जूते पड़े हुए पानी में, हमारे पानी के ऐसी तैसी कर दी हुई है। क्या लोगों की मेंटेलिटी है,
0: बहुत अच्छा विषय, बहुत प्यारा विषय है। इधर थोड़ा
1: इस
0: करें
1: गली में
0: ब्रीफ।
1: देखो, जिस गली में मैं खड़ा हूँ अभी, इस गली में खड़ा हूँ, फोन कर रहा हूँ, इस गली में अभी पूरे मतलब गंद पड़ा हुआ। फिर हम बुजुर्ग हम दिखा गए, मैं तो
0: ठीक।
1: सचिन जी ये बोल रहा हूँ कि आप कपड़े ब्रांडेड मत लगाइए, है ना,
0: जी
1: जूते ब्रांडेड मत ना डालिए, कुछ ब्रांडेड नहीं है। जब तक आपकी सोच ब्रांडेड नहीं है ना,
0: बहुत अच्छी बात।
1: सोच ब्रांडेड मतलब जिसको सोच आइडियोलॉजी शुड भी ब्रांडेड, बस कोई
0: बहुत
1: लाइक कोई ऐसी आस डालने की जरूरत
0: ये
1: नहीं
0: वाकई
1: है
0: में
1: कि
0: विषय
1: आपके जूते कौन से डाले, कपड़े कौन से डाले, उसकी कोई जरूरत नहीं है,
0: बिल्कुल अनिल जी
1: आपकी
0: बहुत
1: सोच
0: अच्छी गल
1: ब्रांडेड
0: करी। तो
1: होती
0: है
1: है।
0: अनिल जी बहुत प्यारी गल करी, बहुत अच्छी गल करी। तुसु थाउ थोड़ा करी इजाजत की सो लेना चंदा समीरा, थोड़ा करी आवाब बुंदा, बहुत सारे श्रोता कॉल कर देन
1: तो मैंने आपका माफ
0: वक्त।
1: करना, मैं ज्यादा समय ले लिया,
0: जी ना
1: तो
0: चलिए जी,
1: इसके लिए
0: वक्त
1: आपको
0: वक्त पर तो
1: धन्यवाद।
0: है, धन्यवाद तुंदा तहे दिल तो धन्यवाद करना हूँ जी। वक्त वक्त पर हमेशा बहुत सारे, बहुत कम ऐसे मनो बंदे जो समाज से भी बंदे हिन शो तो है ना, बहुत कम ऐसे मनो बंदे हिन शो तो इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत गहन विषय है कि मंदिर में ही कहो आखिरकार। ये अनिल जी थी जो कि खेल परिसर धर्मशाला था बलूगढ़ थी, चेलियाँ यारा ग्राह तड़ी मंदिर हिन, और इन यादसों की तड़ी मंदिरा में किया सो दारू पी गंदेहा, चिकन खाए गंदा मटन चलो सो तो ठीक है, लेकिन दारू किया सो मंदरा बैक करे फिर तस प्रकार हो गया सो कर दिन था। बिल्कुल सही बोलू कर दिन कि इंदिरा इंदा ही मंदरा अंदर किया सो इस प्रकार हो गए कोयो बंदा है। ये बड़ा चिंता रहा विषय है श्रोता हूँ, बहुत चिंता रहा विषय है। और साफ सफाई रहा प्रकृति ऐसा हो गया सो बड़ा कुछ दिता है श्रोता हूँ, लेकिन यह वापस प्रकृति जो क्या दिच्छू कर देन, यह वापस प्रकृति जो कितना कुछ दिच्छू कर देन। तो अपू सोचा थोड़ा करिए चिंता रहा विषय था। हाय हा है ना, चरान खड्डी ऐसी नहीं कि जड़िया है नींदे थी है पानी पींदे थी है, इन जितनी भी ये खड्डा हैं जितने भी दे हल्के हल्के नाल हुन है ना, ये सब ऐसी थी शो तो जड़िया है नींदे भी थी है, जड़िया है पानी भी पी लेंदे थी है। लेकिन आज यह जल प्रदूषण के ऐसो इतना प्रदूषित करी दित रहा कि है सच में डर देन कि तती अगर अगर हथ पल्ले है तो अगर कहीं स्किन की ऐसो खराब ना बच गया या पानी रिएक्ट ना बच गया। हालांकि वो नेचर आ वो असू सब कुछ दिच्छू करता है, लेकिन नह वापसी माँ कुछ भी ना दिच्छू करता है। चिंता रहा विषय ते हाश हो तो चलिए इसी सब की चल दें थोड़ा करिए और हगूँ। और लेकिन चल दे तू सब भी जो श्रोता हूँ कार्यक्रम में थोड़ा करिए और हगूँ। और चलिए मातारी भेंट इन यादसी हिन, लेकिन ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਲੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਛੋਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਜੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟਾ ਨਾ ਸੁਲਿਆ ਸੁਲੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਸੋ ਤੂੰ ਸੁਧਕ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਛੋਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਭ ਰੇਡੀ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੋਗੀ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਔਰ ਗੂੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਰੇ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अनुसार चल रही था। चलिए चलते थोड़ा करे और हगूँ और इन दे श्रोतागण के अनुसो बिल्कुल असूगी जुड़ रहे हैं इस समय 708 8 आका 709 पर तो है भी जुड़ी सकते हैं।

चलिए सो तो चल दिन और कार्यक्रम मंच माता री भेंट किया सुत सुत ग्रह पहुंचन दे हिंदू तो है सब बंडो ने समय रेडी उन चंद्री गोल सोगे हिंदी अपनी गप्पा सोगे यही बने रहे छुड़े रहा।

चलिए श्रोताओं, तो हम इस समय कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा और कार्यक्रम मंच, तो सब बंडुओं ने इस समय सचिन कपूर सो गए और बहुत प्यारे दे गीत हूँ अमित मित्तुरी आवाज में। तो श्रोताओं, तो सब बिल्कुल बंडुएन और जुटुएन FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंचन धर्मशाला सो गया। अभी वक्त बुझ गया श्रोता, तो सभी तो इजाजत लेने रहा, तो सभी जो टाटा बाय बाय बोलने रहा, लेकिन गंद गंदे की स्वाग जानकारी और तुझ हो गया जरूर साझा करना चाहूँ। ये जानकारी श्रोता हूँ मानसून तो रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मानसून री दस्तक किया, तदि वास्ते थोड़ा घर इंतजार करना पैना है श्रोताओं जी बिल्कुल। और मौसम विभाग है कि ऐसो प्रदेश में कई जिला में 22 से 25 रे बीच की ऐसा बुझ सकता बरखा बचेगा है ना, तो कई जिले अंदर बुझ सकती। और सोगी सोगी तू सभी दसना चाहता कि आमतौर पर हिमाचल में किया सो मानसून 25 जून तो बाद किया 25 जून रे आसपास किया सो एंटर कर लेता है, लेकिन इस बारी की ऐसो मानसून की रफ्तार की ऐसो धीमी है, तो इस बारी थोड़ा देर की ऐसो बुझ सकते हैं। पिछले साल रे अगर है गल करने 2025 रिता 20 जून वे आसपास की ऐसो मानसून ने एंट्री किया सो मारी थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इस बारी किया सो थोड़ा करे मानसून डिले बुझ सकता है, लेट बुझ सकता है श्रोतों। तो चलिए जानकारी रहा पिटारा तय खुलते रहना, अब थोड़ी देर बाद फिर ही मिलते हैं। फिलहाल अपने इस गाद्य कार्यक्रम तो आऊँ सचिन कपूर ले लेनो इजाज़त 91.2 FM पर, तो है गाद्य कार्यक्रम किया हिंदी अपनी गप्पा इस कार्यक्रम रहना। ये तो सब हूँ देन श्रोतों रेडियो गुंजन में और फेसबुक रे माध्यम से माध्यम तो भी कुछ एक झलकी के नो तुसो उस दिन शो तो है ना। तो फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेनो इजाज़त, हंस दे रहे मुस्कुरा दे रहे और रेडी गुंजन मार्जे सचिन कपूर जो यहीं हुन दे रहे और हुन दे रहे। नमस्ते धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताएं, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो। हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा हो?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सोचना मुझे बहुत अच्छा।

0: लगा। इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
1: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
0: हाँ बोलो।
1: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
0: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
1: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
2: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

और वो रखनी भी चाहिए श्रोताओं, ताकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है और लाजवाब जो है वो ज़रूर लगता है। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप सभी बाखूबी जानते हैं कि आप तक हम जो है वो जानकारियाँ पहुँचाएँगे, साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे श्रोताओं, और भी बहुत अन्य जानकारियाँ हैं जो आप तक हम पहुँचाएँगे। तो बहरहाल धर्मशाला का मौसम क्या बोल रहा है इस समय, अगर हम बात करें श्रोताओं तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो धर्मशाला का मौसम इस समय बना हुआ है। और नमी की बात करूं श्रोताओं तो 66% नमी जो है वो इस समय धर्मशाला में बनी हुई है श्रोताओं। तो यह है धर्मशाला का मौसम, आप सभी ने जाना, और ज़्यादा इच्छुक रहते हैं वो लोग जो धर्मशाला से बाहर रहते हैं कि इस समय धर्मशाला का मौसम कैसा है, है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से 2-3 दिनों से जो है वो बिल्कुल यहाँ ठंडा मौसम था, है ना, उतनी धूप नहीं हो रही थी, हल्की धूप जो है वो हो रही थी। तो आज जो है आज पूरा दिन मौसम साफ रहा है श्रोताओं। तो चलिए जी, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, और बहुत सी अन्य जानकारियां जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं। लेकिन बिल्कुल बहुत सारी अन्य जानकारियां जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगी श्रोताओं। आप सभी बने हुए हैं इस समय वीडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो चलिए, आप सभी बखूबी जानते हैं कि हम कार्यक्रम का आगाज़ जो है वो ज़रूर करते हैं और आगाज़ बहुत ज़रूरी है। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यही तो चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं श्रोतो, और आप सभी के साथ अब कुछ एक जानकारियां जो है वो फिर से हम साझा करते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से भी हम बिल्कुल लाइव जो है वो इस समय उपस्थित हो गए हैं आप सभी के फ़ोन पर भी, और रेडियो सेट के माध्यम से आपके अपने रेडियो सेट पर भी जो आपने अपने घर के उस कोने में रखा हुआ है जहां हमारी आवाज़ गूंजती है श्रोताओं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला पर 91.2 फ्रिक्वेंसी पर। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सी बात कर लेते हैं। वीकेंड पर जो है श्रोताओं पर्यटक ज़्यादा थे और मैक्लोडगंज में चांदी था श्रोताओं। जी बिल्कुल, आप सभी को बताना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और वीकेंड की छुट्टियों के चलते धर्मशाला मैक्लोडगंज और त्रियुंड में जो है वो पर्यटकों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ कर आई श्रोताओं। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान सहित दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला पहुँचे, वहीं विदेशी सैलानियों की भीड़ भी जो है वो अच्छी खासी मौजूदगी जो है वो देखने को मिली श्रोताओं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रोताओं काफ़ी जो वहां के स्थानीय लोग थे वो काफ़ी खुश हुए श्रोताओं। मैक्लोडगंज भागसुनाग और त्रियुंड के प्रमुख पर्यटन स्थल दिन भर जो है मैं बताना चाहता हूं वो बिल्कुल गुलजार रहे श्रोताओं और गुलाब की तरह खिलते रहे। जी बिल्कुल, मैक्लोडगंज बाजार भागसु क्षेत्र तथा त्रियुंड ट्रैक मार्ग पर जो है वो पर्यटकों को इतनी अधिक आवाजाही हुई कि कई स्थानों पर पैदल चलने के लिए भी जो है वो जगह कम पड़ गई। जी बिल्कुल श्रोताओं, और बताना चाहते हैं भागसू वाटरफॉल जाने वाले मार्ग पर जो है वो दिन भर सैलानियों की भीड़ जो है वो लगी रही। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों, होटल कारोबारियों और टैक्सी चालकों के चेहरे पर भी जो है वो रौनक बहुत ज़्यादा दिखी श्रोताओं, और खिले खिले हुए उनके चेहरे जो हैं वो दिखे। वीकेंड पर जो है श्रोताओं वो बड़ी पर्यटकों की संख्या के कारण मैक्लोडगंज और धर्मकोट मार्ग पर कई स्थानों पर लंबा यातायात जाम जो है वो भी देखने को मिला। वाहनों की लंबी कतारें जो है वो लगने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को परेशानी का सामना जो है वो भी करना पड़ा। धौलाधार की गोद में बसे प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैकिंग स्थल पर जो है वो काफ़ी भीड़ देखने को मिली श्रोताओं। पिछले कल तो पहाड़ियों पर दूर दूर तक टेंट ही टेंट जो है वो दिखाई दिए। बिल्कुल एंजॉय करनी चाहिए ज़िंदगी, और हम इतने खूबसूरत शहर में रहते हैं, यहाँ की प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इसे संजो कर रखना जो है, इसे संभाल कर रखना जो है वो हम सभी का दायित्व बन जाता है, हम सभी का कर्तव्य बन जाता है श्रोताओं। चलिए जानकारियों का बिटारा यूं ही चलता रहेगा, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।
1: राजश्री से जुड़े रहने के लिए

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आप सभी को लेके चलते हैं श्रोताओं कुछ एक और जानकारियों की ओर, और आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा आप सभी के रेडियो उस सेट पर। तो आइए श्रोताओं लेके चलते हैं, आप सभी को बहुत से प्यारे से गीत हैं हमारे पास, गीतों के साथ तो आपको गीत मालाओं के साथ आपको हम ज़रूर रूबरू करवाएंगे श्रोताओं। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ एक जानकारियाँ भी आप तक जो है वो हम बिल्कुल आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं। कांगड़ा के डूंगा बाजार वार्ड 6 में जो है वो निजी हड़कंप के दूषित पानी से जो है वो लोग बीमार हो रहे हैं, और लोगों के बीमार होने के मामले जो है वो उपमंडल प्रशासन ने उस पर जो है वो कड़ा रुख अपनाया है श्रोताओं। एसडीएम कांगड़ा ईशान जसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत जो है वो आदेश जारी करते हुए संबंधित निजी हैंडपम्प को तत्काल प्रभावित से बंद कर सील करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं श्रोताओं। ये कार्रवाई जो है वो बिल्कुल तेज़ है, और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी से हमारे शरीर में जो है वो कम से कम 60 से 70% मुझे लगता है जो पानी है उससे बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में लगती हैं। अगर आपने अच्छा पानी नहीं पिया है तो फिर इस तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो हमें करना पड़ सकता है। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्यारे से गीत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। तो श्रोतो अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का और अंतराल के बाद जो है वो आप सभी से हम ज़रूर रूबरू होंगे श्रोतो। चलिए अंतराल की ओर आपको ज़रूर लेके जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले श्रोतो ये जानकारी जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचा लेते हैं, ये जानकारी आप तक हम ज़रूर साझा जो है वो कर लेते हैं श्रोतो। पर्यटन राजधानी कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते हैं पर्यटक स्थल खनियारा अगंजर महादेव मंदिर, इंदौर नाग मंदिर, खनियारा, खड़ोता, लुंटा व नड्डी में सड़कों की दयनीय हालत अब व्यवस्था पर बड़ा सवाल जो है वो उठा रही है श्रोतों। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं खस्ता हालत सड़कों और ट्रैफिक जाम से खनियारा पूरी तरह से परेशान हो गया है श्रोतों। धर्मशाला खनियारा मार्ग में पटोला मैदान से अगंजर महादेव मंदिर तक कई स्थानों पर अति जो कंजस्टेड रोड है, सड़क मार्ग से स्थानीय लोगों की परेशानियाँ बढ़ा दी गई हैं श्रोतों। पर्यटकों के वाहनों के पहुँचने पर अब लंबा ट्रैफिक जो है वो जाम लगा हुआ है श्रोतों। लंबा ट्रैफिक जो है वो लगा हुआ है। अब खनियारा के स्थानीय युवाओं ने जल्द सड़क सुधार व मुरम्मत कार्य की मांग उठाई है। धर्मशाला के खनियारा क्षेत्र में लगातार बढ़ती भारी वाहन पर्यटकों की आवाजाही और खस्ता हालत सड़क व्यवस्था के कारण खनियारा, खड़ोता व लूंटा गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है श्रोतों। इसी बीच खनियारा के स्थानीय युवाओं ने सड़क सुधार को लेकर जोर शोर से मांग उठाई है। कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा, खुलता रहेगा श्रोतों। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पुनः वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस अगली जानकारी की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण पर एवं नशों के अवैध प्रचलन पर रोक के चलते अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर 25 जून को निश्चय दिवस के रूप में जो है वो शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। श्रोताओं ये आयोजन स्वास्थ्य सामाजिक एवं कल्याण तथा गुंजन संस्था के संयुक्त तत्वाधन में किया जा रहा है। श्रोताओं ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य नशे की मांग को कम करने, नशे के बारे में जागरूक करने, स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करने तथा नशा मुक्ति अभियान में सामान्य लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। श्रोताओं आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे साथ लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। तो लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। तो श्रोतों चलिए लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। ईरान और अमेरिका में शांति वार्ता के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। श्रोतों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह जो है वो अपने समर्थक संगठन और गतिविधियों पर रोक लगाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अगर ईरान ने जो है वो हिजबुल्ला को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा जो है वो बड़ा हमला करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जो है उसको बंद करने की ज़रूरत की तो उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है और पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि आप इसे बंद करोगे तो आपके पास कोई देश नहीं बचेगा, आप अपने देश वापस भी नहीं जा सकेंगे, है ना जी। तो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान में शांति पर वार्ता भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी जो है वो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है वो सामने आ रही हैं। श्रोताओं चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं भारत की T20 वर्ल्ड कप में महिला हार। श्रोतों जी बिल्कुल ये थोड़ा सा खेल समाचारों की ओर आपको रूबरू करवाएं। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को पहली हार का सामना जो है वो करना पड़ा श्रोतों। और जी बिल्कुल मैनचेस्टर में ये मैच जो है वो खेला गया था श्रोतों, और साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों से जो है वो जीत दर्ज की श्रोतों। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 158 रन जो है वह बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए और टारगेट हासिल कर लिया श्रोतों। चलिए जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा श्रोतों। आप सभी बने हुए इस समय आपके सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शो तो वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और आप सभी बने हुए इस समय आपके अपने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ। शो तो अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन में एक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: पर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

छोटो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, तो है सभी ट्यून कर, आप सभी ने ट्यून किया और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। चलिए श्रोताओं, तो थोड़ी सी और जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। आप सभी बने हो इस समय सचिन कपूर के साथ। तो हिमाचल में देरी से आएगा मानसून। श्रोताओं जी, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मानसून की दस्तक का इंतज़ार लंबा होता दिखाई दे रहा है। श्रोताओं, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई ज़िलों में जो है वो 22 से 25 जून के बीच जो है वो तेज़ हवाएं चलने की, हल्की बारिश होने की संभावना जो है, बिजली चमकने की संभावना जो है वो जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है श्रोताओं। लेकिन आज 22 है, तो आज से हुआ होगा कुछ एक क्षेत्रों में शो, तो है ना, येलो अलर्ट जारी है 25 तक अब। और सामान्य तौर पर हिमाचल में मानसून जो है वो 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी बनी हुई है। पिछले वर्ष मानसून ने 20 जून को ही प्रदेश में जो है वो दस्तक दे दी थी। श्रोताओं, अगले 2-3 दिन में जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं श्रोतों। हालांकि हिमाचल तक इसके पहुंचने में अभी समय लग सकता है। विभाग ने 22 से 25 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी ज़िलों में जो है वो कहीं ना कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई है। शिमला ज़िला में 23, 24 और 25 जून को जो है वो तेज़ हवाओं को लेकर बिजली चमकने को लेकर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है श्रोताओं। सिरमौर ज़िला में 24 और 25 जून को इसी तरह की चेतावनियां दी गई हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति ज़िला के लिए किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है श्रोताओं। ये सब जानकारियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और आपके अपने वेडियो सेट के सामने। तो अब मैं सचिन कपूर जो है श्रोताओं वो आपको लेके जाऊंगा इस प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं, बने रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ, आपके अपने वेडियो के साथ, वेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, इसी तरह से

श्रोतों कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम इस समय चल रहा है वीडियो वेड़ी गुंजन के माध्यम से आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। जानकारियों का सिलसिला बिल्कुल यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा। चलिए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। पठानकोट मंडी फोर लाइन परियोजना का एक बार फिर सवालों के घेरे में जो है वो है श्रोतों खड़ी हो चुकी है। मतलब इस समय फोर लाइन एक बार फिर से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और घटिया गुणवत्ता अब खुलकर सामने आने लगी है श्रोतों। हालात ये हैं, मंजर ये है श्रोतों कि परियोजना का काम अभी तक अधूरा पड़ा है और मौजूदा गति को देखते हुए इसके निर्धारित समय में पूरा होने की संभावना बेहद कम नज़र आ रही है। दूसरी ओर जहां जहां निर्माण हुआ है वहां गुणवत्ता को लेकर गंभीर खामियां दिखाई देने लगी है। कासड़ मील सुरंग से लेकर ठानपुरी तक कई स्थानों पर सड़क किनारे बनाई गई जो वॉल है श्रोताओं वो कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। कई जगह पत्थर बाहर की ओर जो हैं वो फूल चुके हैं। बरसात मौसम होने से पहले ही ये स्थिति सामने आने से स्थानीय लोग और वाहन चालकों में भारी चिंता है श्रोताओं। लोगों का कहना है कि यदि अभी ये हालत है तो भारी बारिश के दौरान कभी भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। वर्षा से लोग कहीं ना कहीं ज़रूर परेशान होते हैं, हम सभी इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं श्रोतों, और कहीं ना कहीं यातायात की परेशानियां जो है वो झेल रहे हैं अभी स्थानीय लोग। वहां के कई स्थानों पर मशीनरी और श्रमिकों की संख्या कम है श्रोतों, जिससे साफ प्रतीत होता है कि निर्माण एजेंसियां समय सीमा को लेकर गंभीर नहीं है, और जो कि समय है वो बहुत अहम है हर किसी के लिए श्रोतों, चाहे वो एक किसी भी वर्ग का इंसान क्यों ना हो, समय जो है वो बहुत कीमती है। और जो व्यक्ति समय की कीमत जान लेता है, जो व्यक्ति समय समय पे अपने आप को उस समय के अकॉर्डिंग जो है वो ढाल लेता है, उस समय के साथ जो है वो चलने लगता है, वो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता है श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। आप सभी बने हैं, जुड़े हैं हमारे साथ वीडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत प्यारा सा गीत है, हम सभी ने सुना पत्थर के सनम। चलिए गीत तो यूँ ही चलता रहेगा। श्रोताओं आइए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं प्रदेश भर में 10 लाख स्मार्ट मीटर जो हैं वो लग चुके हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, राज्य में बिजली बोर्ड के विभिन्न मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो बिजली बोर्ड की ओर से हमारे तक जानकारी पहुँची है श्रोताओं, उन्होंने बताया है कि 10 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर जो है वो स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें बोर्ड के सोलन सर्कल में जो है वो सबसे अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं श्रोताओं, जबकि शिमला और रामपुर सर्कल में संख्या थोड़ी सी कम है श्रोताओं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। घर दुकानों में जो है वो चरणबद्ध तरीके से लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर श्रोताओं, और 10 लाख तक जो है वो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं प्रदेश भर में। तो कहीं ना कहीं मैदानों में प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों में सैलानियों का जो सैलाब है वो मुड़कर आ रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ श्रोताओं, चंडीगढ़ मनाली NH पर ट्रैफिक का भार है। एक महीने में 5.25 लाख वाहन जो हैं वो गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल, कुल्लू मनाली जाने वालों की बड़ी भीड़ श्रोताओं, और कहीं ना कहीं 5.25 लाख वाहन जो है वो गुजर चुके हैं। शिमला में 2 महीने में 16 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही जो है वो हो चुकी है श्रोताओं। ये देखिए, ये रिपोर्ट है श्रोताओं, हम आप तक इस रिपोर्ट को जो है वो ज़रूर साझा करते हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है श्रोताओं। ये NH 5 लाख से ज़्यादा वाहनों का दबाव जो है वो झेल रहा है। एक महीने में नेशनल हाईवे से होते हुए 5.25 लाख से अधिक वाहन गुजर रहे हैं श्रोताओं। इन वाहनों में जो है वो कुल्लू मनाली जाने वालों की संख्या अधिक है। वहीं श्रोताओं मंडी से लेकर ओट तक 5 स्थानों पर आपदा के जख्म अभी भी हरे हैं श्रोताओं। आपदा के जख्म जो हैं वो अभी भी हरे हैं श्रोताओं। ये 5 स्टॉप बन वे हैं जो जाम की बड़ी वजह है। आंकड़ों के अनुसार 22 आज और 22 मई से माफ़ करें आंकड़ों के हिसाब से 22 मई से 21 जून तक श्रोताओं, आप जानना चाहेंगे कि मंडी से होकर 5,25,680 वाहन जो है वो गुजर चुके हैं, जिसमें हवाई पर यातायात का भारी दबाव जो है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल श्रोताओं, हवाई पर यानी कि उड़ती ही तो जाती हैं ना गाड़ियाँ उड़ती ही तो जाती हैं हाईवे पर गाड़ियाँ, इसलिए हवाई पर ज़्यादा यातायात जो है वो भारी पड़ा हुआ है श्रोताओं, यानी कि कहीं ना कहीं हाईवे पर जो है वो यातायात का भारी दबाव देखने को मिला है श्रोताओं, और कहीं ना कहीं यहाँ बार बार ट्रैफिक भी जाम हो रहा है श्रोताओं, और 5.25 लाख वाहन गुजरे हैं। देखिए पर्यटक सीजन के दौरान लाखों पर्यटक जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है श्रोताओं हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी इस चीज़ से बाखूबी रूबरू हैं कि टूरिस्ट पर जो है वो हमारा हिमाचल टिका हुआ है ना, टूरिज़म इलाका है, तो उस वजह से टूरिस्ट पर जो है वो बहुत सारे चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं प्रदेश की। तो चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूँ ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस प्यारी सी गजल की, और बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने पन की।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आई श्रोतो अब वक्त हुआ है वेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए।

0: ओके
1: रोड किसी के बाप का नहीं है.
0: वेरी गुड. चलिए रिवर्स लीजिए. सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा.
2: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे. और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप. कैसे? आपको एक फोन आएगा.
3: हेलो. हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो. हाँ.
2: या आपको एक फोन आएगा.
4: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए.
2: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे.
4: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते.
3: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
4: रिसीव करते वक्त नहीं.
3: तो याद रहे,
5: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो.
0: मुहूर्त कब का निकला?
6: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को.
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम.
6: आप चिंता ना करें.
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे. पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए. ये का? ये तो खोटा सिक्का है.
6: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
7: नहीं है हम खोटा सिक्का. बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज. काहे नहीं सुनते आप हमारी?
0: तुम क्या खड़ा हो?
7: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए.
8: ले जाए पक्का?
7: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा.
9: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो है, खोटा सिक्का नहीं चलेगा.
10: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
11: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा.
10: हाँ बोलो.
11: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे.
10: अभी बताती हूँ. बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का.
11: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
7: गजब बेइज्जती है.

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.9 दो मेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और 7:45 हो चुके हैं श्रोताओं, इस समय अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कई महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बताया जनविरोधी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के तहत संतोषजनक कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत भरपूर मदद दे रही केंद्र सरकार। और मिड डे मील वर्कर्स का शिमला में प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर के हरनोड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह नादौन में ब्यास नदी और शिमला जिला में सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नई इको टूरिज्म नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा भी आरंभ की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 137 करोड़ रुपए की लागत से चैलचौक जंजहली सड़क को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 83 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना को सीआरआईएफ के तहत मंजूरी मिली है और इसके पूरा होने से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी सहित प्रदेश के कई अन्य महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को बंद कर सरकार ने स्थानीय युवाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों पर सीधा प्रहार किया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की बजाय छात्र संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता कौल नेगी के नेतृत्व में ननखड़ी से आए एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के विस्तार और पहुंच को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दूध संग्रहण केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों से पूरा दूध नहीं खरीदा जा रहा और न ही उन्हें समय पर भुगतान किया जा रहा है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज शिमला में मंडी व ऊना जिलों में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने मंडी जिले के 98 क्लस्टरों में करीब 1085 हेक्टेयर क्षेत्र और ऊना जिला के 12 क्लस्टरों में करीब 224 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित परियोजना गतिविधियों का ब्यौरा लिया। जगत सिंह नेगी ने बागवानी विभाग के अधिकारियों को 30 जून तक संतोषजनक प्रगति न होने की स्थिति में ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाने चाहिए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित युवा इन दिनों लाहौल स्पीति जिला के सीमावर्ती गांव के भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चरण दो के चौथे दिन की शुरुआत योग और ध्यान सत्र से हुई। इससे युवाओं में स्वास्थ्य और सामूहिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने लेपचा, लांजा, हिक्किम और कौमी गांव का भ्रमण किया। युवाओं ने यहां की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवन शैली को करीब से जाना। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और माई भारत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका शुक्ला को पत्र लिखकर अपने विचार और आकांक्षाएं भी साझा की। वहीं तीरंदाजी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांव के युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बिलासपुर जिला के 22 चयनित गांवों में विकास

0: कर्मचारियों के लिए 20-20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में पंचायतों को पूरा सहयोग दिया जाए ताकि विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जा सकें। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बरसात के नुकसान के लिए भरपूर सहायता दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत किए हैं। वे आज शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज रही है और उसी के आधार पर केंद्र द्वारा फंड जारी किया जाता है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और मनरेगा व MPLAD के लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में बढ़ोतरी या गड़बड़ी संबंधी कुछ एक मामले सामने आए हैं जिनका निपटारा कर दिया गया है।
1: आज हमारी दिशा की बैठक थी और इसमें हमने लगभग 40 के करीब जो और केंद्र और स्टेट की जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू किया। काफी प्रोग्रेस देखने में हमको मिली है। मैंने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है और अभी से हमको उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और अभी जो RDSS करके एक विद्युत विभाग की स्कीम आई है जिसमें जहाँ पर भी बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या है या ट्रांसफार्मर्स को चेंज करने की आवश्यकता है, 3 फेज लगाने की आवश्यकता है, उसमें बहुत अच्छा काम देखने को मिला है।
0: मिड डे मील वर्कर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान C2 से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी, पेंशन और 12 महीने का वेतन देने जैसी मांगों को लेकर शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक रोष रैली निकाली। मिड डे मील वर्कर्स ने केंद्र व राज्य सरकार पर उनके शोषण का आरोप लगाया। यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने मिड डे मील वर्कर्स को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन देने और नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग की है।
2: मांग ये थी कि हमें हरियाणा की तर्ज पे वेतन दिया जाए और न्यूनतम वेतन में हमें लिया जाए, 25 बच्चों की शर्त को खत्म किया जाए, छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, साल में 2 वर्दी दी जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए। 3-4 महीने के बाद वेतन दिया जाता है जिससे कि हमारा घर चलाना मुश्किल होता है।
0: यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
3: 2004 से लेकर के ये स्कीम मिड डे मील वर्कर की चली है, तब से इसमें अब तक सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं किया है, इसलिए हम ये धरना देने के लिए मजबूर हुए। अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम आगे और उग्र आंदोलन तैयारियां करेंगे और सरकार का अच्छी तरह से कठोरता से सामना करेंगे।
0: प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड का वर्ष 2026-27 के लिए करीब 14 करोड़ रुपए का बजट आज तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में पारित किया गया। इस दौरान अभिषेक जैन ने बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में पढ़ाए जाने वाले बहुतकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम को समय समय पर संशोधित करने और नवीनतम विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने को भी कहा। शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सांसद सुरेश कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता कर्ण नंदा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जाखू, US क्लब, बैनमोर और कनलोग क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को वाहन परमिट से राहत दिलाने की मांग की। उन्होंने इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी करने, परमिट शुल्क में तर्कसंगत कमी और प्रतिबंधित मार्गों से संबंधित नियमों में छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल करने का आग्रह किया। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40 लाख लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लाख लोगों ने अपना पता अपडेट करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया है। ऐप के जरिए एक ही क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कई महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बताया जनविरोधी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने HP शिवा परियोजना के तहत संतोषजनक कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के तहत भरपूर मदद दे रही केंद्र सरकार। और मिड डे मील वर्कर्स का शिमला में प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ रेडी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतो अब कार्यक्रम से मुझे यानी सचिन कपूर को आप दीजिए इजाज़त और जाते जाते यही कहूँगा आप सभी को, माँ बाप की सेवा कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, रिश्तों को अच्छे से निभाइए और जितना हो सके उतना डाउन टू अर्थ रहिए श्रोतो, ज़मीन से जुड़े रहिए क्योंकि एक दिन ज़मीन में ही तो हम सभी को लीन होना है, है ना। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जाते जाते ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा के जाएंगे श्रोतों। मैं यानी सचिन कपूर आपसे अब ले लेता हूँ अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,

0: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
1: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया।
0: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
1: तिलक साहब जिंदा है?
0: तिलक?
1: हाँ।
0: अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है।
1: रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है?

0: आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे। और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
1: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
0: या आपको एक फोन आएगा।
2: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
0: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
2: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
1: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
2: रिसीव करते वक्त नहीं।
1: तो याद रहे,
3: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
4: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
5: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
4: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
5: आप चिंता ना करें।
4: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
6: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
5: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
7: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
6: तुम क्या खड़ा हो?
7: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
8: ले जाएं, पक्का?
7: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
9: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
10: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
11: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
10: हाँ बोलो।
11: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हुए।
10: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
11: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या,
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
18: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों?

0: तो दिखाइए, ये कहाँ है? ये तो खोटा सिक्का है।
1: और ये कहाँ है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
2: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
0: तुम क्या खड़ा हो?
2: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
3: ले जाए पक्का?
2: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
4: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
5: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
6: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
5: हाँ बोलो।
6: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
5: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
6: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
7: गजब बेइज्जती है।

जाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। इतने

उठाओ दिल, इसको दूं या उसको दूं।